मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

मिनी वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद

0: खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मिनी वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। विचार मंथन। डॉक्टर नेल्सन मंडेला का कथन है, शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है जिसका उपयोग आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में देशभक्ति रचना के साथ।

हमारा मन जो हर समय आनंद, रस, सुख ढूंढता रहता है, पर सच्चा सुख तो गुरु के चरणों में है।

जल में, थल में, नील गगन में, कण कण में है प्रभु की छाया। जिसने मन की आंखें खोली उसने उसका दर्शन पाया।

प्रेम ही तो तीर्थ है, प्रेम धर्म है, प्रेम ही है अर्चना, प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही प्रभु का नाम, प्रेम ही भजन है।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही हमारा आज का भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख श्री रमेश कुमार छत्री का है, वाचक स्वर दिनेश नामदेव का।
1: इस नश्वर संसार की नश्वर वस्तुओं में आसक्ति और उसे ही जीवन का सार समझ उसी में रम जाना ही भोग है। ठीक इसके विपरीत आत्मा के साथ जुड़ना, आत्मा की आवाज़ सुनना, उसी के आदेशानुसार चलना ही योग है। अधिकांश लोग संसार को सुखों की खान समझने की भूल कर बैठते हैं, ठीक उस अबोध अज्ञानी बालक की तरह जो मिट्टी के खिलौने को सच्चा समझकर प्रसन्न होता रहता है, उससे बातें करता है और उसे सहेज कर रखता है। यही दशा मनुष्य की भी है। जबकि सांसारिक सुख वस्तुतः महज मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं। आज खिला सुंदर सुगंधित फूल कल मुरझा जाएगा, ठीक यही स्थिति सांसारिक सुखों की है, वस्तुओं की है। इसमें दोष है मनुष्य की आत्मा का, उसके मन मस्तिष्क का, कि वो इनके पीछे भाग रहा है सिर्फ इसीलिए कि मनुष्य इनका गुलाम है और एक तरह से गुलामी का जीवन जी रहा है। वो इससे मुक्त भी होना चाहता है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता। मुक्ति हर मनुष्य चाहता है, लेकिन उसका मन तो खिलाड़ी है। वो संसार रूपी मैदान में इधर उधर विचरता ही रहता है। जीतने की प्रबल अभिलाषा उसे मुक्त होने देना नहीं चाहती, और इसी अभिलाषा में वो असल आनंद को खोता चला जाता है। वास्तविकता तो ये है कि सच्चा सुख और आनंद बाहरी भटकाव और वस्तुओं में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है, अपनी आत्मा के भीतर है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, उसका निर्णय सुखकारी है। आत्मा अंतर विवेकशील और अभौतिक पदार्थ एक शाश्वत और अनंत सूक्ष्म बिंदु है। जब सांसारिक मोह माया को तजकर उसे दिव्य दृष्टि से देखा जाता है तो अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा की ऊर्जा असीम है,

0: कहने का तात्पर्य यही है कि आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि वो अपने भीतर है, अपनी आत्मा में है। इंद्रियां सुख दुख को भोगती हैं, जबकि आत्मा निरपेक्ष और सभी दुखों से परे है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख श्री रमेश कुमार छत्री का था, वाचक स्वर माधवी येंडे का। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

मिनीवेव पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 208।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं। आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का भाग 208। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामयिकी। आज का विषय है फल बागों की स्थापना।
1: फल के वृक्ष अनेक वर्ष तक जीवित रहते हैं, यानी कि यह स्थायी और प्राकृतिक रूप से होते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की होती है कि उद्यान या बाग की स्थापना बाग से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रख के की जाए, जैसे कि कौन सी जगह का आप चुनाव कर रहे हैं, कौन से फल का चुनाव कर रहे हैं, रेखांकन कैसे किया है आपने, प्रारंभिक तैयारियां और पौधरोपण की जानकारी। किसी भी बाग को लगाने के पहले उसका रेखांकन करना बहुत जरूरी होता है। रेखांकन ही फल बाग या उद्यान की रीढ़ माना जाता है। रेखांकन के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि सड़क और रास्ते कितने दूरी पे हैं, स्टोर जो मकान के रूप में हम बनाते हैं वो, सिंचाई का प्रबंध कैसा है, जल निकास की कैसी व्यवस्था है, वृक्षों का स्थान कहाँ होना चाहिए, जो बाहर बाड़ लगानी है वो कैसी होगी, करौंदों की किनारे किनारे झाड़ी लगाना है या नहीं, बाजार कितने दूरी पे है, इन सबको ध्यान रखकर रेखांकन करें। यदि वर्षा ऋतु में पौधे रोपण किए गए हैं तो फल वृक्ष लगाने के लिए उचित दूरी पर प्रयास करें। जैसे कि यदि आम का पौधा लगाना है, इसके लिए 10×10 मीटर की दूरी रखें और इसके लिए जो गड्ढा तैयार करना है वो 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा होना चाहिए। साथ ही अनार, आंवला, नींबू के लिए दूरी 6×6 मीटर होनी चाहिए, मतलब पौधों के बीच में 6 मीटर की दूरी और पंक्ति के बीच में भी 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अमरूद के लिए यह दूरी 8×8 मीटर हो जाती है और खूंटियां वर्गाकार आकार में लगा देना चाहिए, जिससे कि आसानी बाद में रहती है। इसके बाद जो खूंटियां लगाई गई हैं उस स्थान पर गड्ढे बनाकर उनको खुला छोड़ देना चाहिए। वर्षा के आरंभ होने के पहले इन गड्ढों में गोबर की अच्छी पकी हुई खाद, उर्वरक और दीमक से बचाव के लिए दवा अवश्य मिला के डालें। गोबर की खाद कितनी डालनी है, उर्वरक कितना डालना है, ये तो पौधों की किस्म और उनकी आयु पर निर्भर करता है। अमरूद का बाग लगाना है तो प्रथम वर्ष यानी कि पौधे रोपण के समय 10 किलो पकी हुई गोबर की खाद डालनी होगी, 60 ग्राम नतजन डालने, 30 ग्राम फास्फोरस और 30 ग्राम पोटाश। दीमक की रोकथाम के लिए 3 किलोग्राम नीम की खली का उपयोग करें। दूसरे वर्ष 20 किलो गोबर की खाद लगेगी, 120 ग्राम नतजन लगेगा, 60 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटाश। यदि आम का बाग लगाया है तो 10 किलोग्राम गोबर की खाद लगेगी शुरुआत में और 100 ग्राम नतजन लगेगा, 50 ग्राम फास्फोरस, साथ ही 50 ग्राम पोटाश जरूरी होता है। खाद की मात्रा 7

0: वर्ष की आयु के बाद आने वाले वर्षों में उतनी ही मात्रा प्रतिवर्ष देना चाहिए जितने की सातवें वर्ष आप दे रहे होते हैं। जो पिछले माह आपने गड्ढे बनाए होंगे बाग के लिए, तो इसमें पौधरोपण आप अभी कर सकते हैं और ये अगले माह तक भी आप कर सकते हैं। पौधरोपित करने का समय बहुत सावधानी से निर्धारित करें। पौधे गड्ढे में उतनी ही गहराई पर लगाए जाने चाहिए जितनी गहराई पर वो पॉलीथिन बैग में या गमले में पहले से थे। पौधे लगाने के पहले उसकी अधिकांश पत्तियों को तोड़ लेना चाहिए। पौधों में अधिक पत्तियों के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, जिसके कारण पौधे के अंदर जल की कमी हो जाती है और पौधा मर जाता है। पौधों की जोड़ की दिशा दक्षिण पश्चिम होनी चाहिए। ऐसा करने से तेज हवा के कारण जोड़ टूटता नहीं। पौधा लगाने के बाद आसपास की मिट्टी दबा देना चाहिए जिससे पौध टेढ़ा ना हो। पौधा लगाने के बाद तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए जहां तक संभव हो सके। पौधा शाम को लगाएं या बिल्कुल सुबह लगाएं। पौधे की उम्र कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए। पौधों को सहारा देना जरूरी होता है, कांट छाट भी जरूरी होती है, थाला बनाना पड़ता है, कर्षण क्रिया जरूरी होती है। कर्षण क्रियाओं का मतलब ये होता है कि उद्यान बाग में जुताई करना, खरपतवारों को नियंत्रित करना, खरपतवार या नींदा नियंत्रण के लिए दवा छिड़काव करें। पुराने बाग में जो पौधे नष्ट हो जाते हैं उनको भी आप इस समय रोपित कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी, विषय था फल बागों की स्थापना। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। कुछ ही समय बाद आप सुनेंगे कार्यक्रमों का विवरण।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। आइए आपको हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही समय बाद यानी कि 7:20 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग जबलपुर। गुड मॉर्निंग जबलपुर में आज हम चर्चा करेंगे वर्षा जल संरक्षण की। सुबह 9 बजे लोक रसधार में आप सुनेंगे डॉक्टर सियाराम जोशी के गाए बुंदेली लोक गीत।

आज सुबह 9:30 पर सुनिएगा पूर्व प्रसारित रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। रूपक इस्पात संस्कृति और सपनों के शहर, जमशेदपुर की नवरंगी पहचान। आलेख होगा शाहिद अनवर, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी, संयोजन राजेश कुमार राय का। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सदी। सुबह 10:10 पर सुनिएगा विश्व दर्पण।

आज शाम 5:33 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 6 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोक संगीत का समय है शाम 6:30। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं बेड़ीलाल अहिरवार।

सुर्खियों में आज रात 8 बजे फिल्म संगीत 8:15 पर, 8:45 पर समाचार संध्या, न्यूज एट 9 रात 9 बजे और स्पॉटलाइट का समय है रात 9:15। फोन इन कार्यक्रम का समय है आज रात 9:30।

आज रात 10 बजे पूर्व प्रसारित अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन और तबले पर संगत पंडित विनोद लेले की। श्रोताओं, ये थी हमारे आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

0: भवति यैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपांत्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार की

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगी मजबूती। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ाएंगे किसानों की आमदनी। और मौसम विभाग के अनुसार आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इससे भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से समुद्री और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे और उभरते क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। राजदूत ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इस प्रवृत्ति को और बल देगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की पहल की घोषणा कर सकते हैं। इनमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वे आगामी रथ यात्रा के लिए रेलवे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ताकि सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे इस साल ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जुड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल एक फसल से नहीं बल्कि उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार खेती के साथ साथ पशुपालन को विशेष बढ़ावा दे रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल ग्वालियर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्नत कृषि पर हुई संभागीय कार्यशाला में मौजूद किसानों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती पर किसानों के अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। 13 जुलाई नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। 14 जुलाई को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र की वापसी की तारीख है। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से कल मध्य प्रदेश संवर्ग 2025 बैच के चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मकवाणा ने कहा कि प्रशिक्षण पूरी तन्मयता से प्राप्त करें ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर सकें। उन्होंने नौ चयनित अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक पद नहीं बल्कि जनता की सेवा का दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नए आपराधिक कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नारकोटिक्स और नशा मुक्ति जैसे विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पांचवीं और आठवीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। इसके साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थी वार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने संचालित शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। प्रदेश में भारी बारिश का सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते पिछले 6 दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में अब तक सामान्य से 1% बारिश कम हुई है, जबकि जून में यह 33% कम थी। अब तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है। देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। जकार्ता में अंडर 23 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज 50 किलोग्राम भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने उज्बेकिस्तान के अमीरबेक इस्माइलोव को हराकर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पुरुष वर्ग के 55 किलोग्राम भार वर्ग में गंगा ने मंगोलिया के अमगाला नबातर बुलगुंग को 5-0 से हराया। वहीं महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने कोरिया की रेंगयोंग किम को 5-0 से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में

कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना जिले में बीती रात हुई लगातार बारिश के चलते केन, मिनासन और पत्नी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झाबुआ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में एकलव्य योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। सतना जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लगभग 100 स्ट्रीट डॉग्स का एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। मंडला जिले की घोघरी तहसील में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग जबलपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश का नमस्कार। आप सभी की आज की मॉर्निंग सेहतमंद हो, खुशनुमा हो, हंसती खिलखिलाती हो, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो। इन भावनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का गुड मॉर्निंग जबलपुर और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दोस्तों, मानसून पहुंच चुका है हमारे अपने शहर जबलपुर में। प्रकृति हमें भरपूर जल देती है, पर हम इसे सही तरीके से संचय नहीं करते। हमें हमारे उपलब्ध जल संसाधनों का विवेकपूर्ण और सुनियोजित तरीके से उपयोग करना है। बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण ताजे पानी के स्रोतों पर भारी दबाव है। पानी की हर बूंद को बचाना भविष्य को सुरक्षित करेगा। जल को बचाने के लिए हमें कुछ उपाय अपनाने होंगे। हमें वर्षा जल संचय करना होगा, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वर्षा के जल को भूमिगत गड्ढों में एकत्रित करके हम भूजल स्तर को बढ़ा सकते हैं। दैनिक कार्यों में जल की बचत की जाए, घरों के नल और पाइपलाइन के लीकेज को सुधारा जाए समय समय पर, ताकि पानी का बहाव ना हो। हमें पानी का रिसाइकलिंग भी करनी चाहिए, जिसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए, ताकि हम पानी की बचत कर सकें।

साथियों, वर्तमान में हुए ईरान अमेरिका और इसराइल युद्ध ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसका एक फायदा यह हुआ है कि हमें आधुनिक जीवन की एक खतरनाक कमी को समझने में मदद मिली है, और यह है ऊर्जा पर हमारी निर्भरता, जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था सभी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। आजकल मानव जीवन का लगभग हर कार्य ऊर्जा से संचालित होता है। सुबह उठकर दांत साफ करने से लेकर मोबाइल पर संदेश भेजने तक, खाना पकाने से लेकर यात्रा करने तक, हर गतिविधि के पीछे हम कहीं न कहीं ऊर्जा का उपयोग छिपा हुआ है। बिना ऊर्जा के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। साथियों, हमें बाहरी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को कम करके जितना संभव हो सके अपनी ऊर्जा को स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना होगा, और साथ ही इसका विवेकपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित करना होगा। कहते हैं ना, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इससे हम न केवल जलवायु संकट को कम कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को अधिक स्थिर और

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं गुड मॉर्निंग, जबलपुर में काव्यरस के अंतर्गत आइए सुनते हैं डॉक्टर रानू रूही को।
4: ये चार पंक्तियां आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूं, सुनिएगा।

सर्वस्व समर्पण करने से क्लेश भाग्य के कटते हैं, सर्वस्व समर्पण करने से क्लेश भाग्य के कटते हैं। सब ग्रंथ यही समझाते हैं, सब ज्ञानी जन ये रटते हैं, सर्वस्व समर्पण करने से क्लेश भाग्य के कटते हैं। अगला बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रारंभ

चरणों में जाके सिमटते हैं। सब ग्रंथ यही समझाते हैं, सब ग्रंथ यही समझाते हैं, सब ज्ञानी जन ये रटते हैं। सर्वस्व समर्पण करने से क्लेश भाग्य के कटते हैं, सर्वस्व समर्पण करने से क्लेश भाग्य के। और यहीं से इस गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। गर समय

गर वृक्ष कहे मैं फल ना दूं, गर आत्म कहे मैं बल ना दूं। अहंकार के वश में हो, अहंकार के वश में हो, जो जने इस

ईश तत्व इस आत्म तत्व में सिमटते हैं, तब जाके फिर ईश तत्व इस आत्म तत्व में सिमटते हैं, तब जाके फिर ईश तत्व इस आत्म तत्व में सिमटते हैं। इस गीत के पश्चात एक और गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, गीत सुनिएगा।

में, सावनी बहारों में, प्रिय तुम मुझको बुला लो ना। गीत का अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। खेतों में स्वर बिखरे पत्तों के फूलों के, खेतों में स्वर बिखरे पत्तों के फूलों के, अल्हड़ से अटखेले और थोड़ी भूलों के, भूलों को अपनी

दोस्तों, काव्य रस में अभी आपने डॉक्टर रानू रूही की रचनाएं सुनी। साथियों, बारिश की बूंदों में भी एक संगीत होता है, मीठी सी धुन है। न जाने कितने गीतकारों ने बारिश पर लिख डाले। बारिश में भीगने का मजा ही अलग है, और फिर जब बारिश हो रही हो तो चाय के साथ गर्मा गर्म मंगोड़े, भजिए और चटपटे गर्मा गर्म व्यंजनों का भी अलग ही मजा है। पर इसके साथ बरसात में सावधानियां भी जरूरी हैं, क्योंकि बारिश का मौसम बीमारियों का मौसम कहलाता है। साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और अब अपने रेडियो दोस्त राजेश को दें आज्ञा, जल्दी ही हम मिलेंगे कुछ नई बातें और गीतों के साथ आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग जबलपुर। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे

0: चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं।

0: खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6ठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे।

फिल्म परवाना में भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत आर डी बर्मन का है, फिल्म का नाम है अपना देश, बोल आनंद बख्शी के।

कहना तो है। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे कुमार सानू को। देव कोहली ने इस गीत को लिखा, संगीत से सजाया राजेश रोशन ने। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म में आइए सुनते हैं के और साथियों को महबूब के बोल और इस्माइल दरबार का संगीत।

फिल्म हाथी मेरे साथी में किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। न्यूज़ हेडलाइंस कुछ ही समय बाद आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: खबरों के बाद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। उन्होंने बताया कि ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ग्वालियर में किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। हम अगले 5 वर्षों में प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। प्रदेश के मुख्य

निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कल भोपाल में बताया कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज

0: देवास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सिया शरण जोशी के गाए बुंदेली लोकगीत। आइए इनके स्वर में सुनते हैं चौकड़िया।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। आज कलाकार हैं डॉक्टर सिया शरण जोशी। आइए इनके स्वर में सुनते हैं बिलवारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रसधार में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सिया शरण जोशी के गाए बुंदेली लोकगीत। तबले पर संगत कर रहे थे सुरेश कुमार पाठक। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 10 बजे पूर्व प्रसारित अखिल भारतीय रवि बांसुरी संगीत सभा की रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन, तबले पर संगत पंडित विनोद लेले की।

0: मीने वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में रूपक इस्पात संस्कृति और सपनों के शहर जमशेदपुर की नवरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी, संयोजन राजेश कुमार राय का।
1: रूपक इस्पात संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आँखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपने श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी एमडीज आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज यूनियन, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं,
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स है, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखिएगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर

0: गार्डन कंपटीशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर. आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं. हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें. लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आया है, पार्क्स आए हैं, जहां इस सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है. बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं. वी आर स्पेंडिंग 1000-1200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters. अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा.
1: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है. कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं.
0: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd generation है, 4th generation है. कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा 5th generation है. नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट है, सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे. उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का. इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है. और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे. बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है, जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए.
1: ईंट पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है. सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास. यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो. यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है. अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है. जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं. यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश की धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी. आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं. विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं.
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट. ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है. कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया. ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ से होता है ताकि आगे जाकर की जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके.
1: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं.
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स.
1: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है. आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है. पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है. डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं.
2: हमारा उद्देश्य ये है कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई पे बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी. कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. सो दैट इज वॉट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री वॉट वर्क इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग.
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक

0: कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
1: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं।
0: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना, यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है, प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं।
1: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में गया। इधर से एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
0: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे, बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे, प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है कि भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म। यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज, आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
0: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
2: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है, बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
0: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की

0: पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
1: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए। हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस ऋषि मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
1: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गाँव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज ये पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे, करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराय कला। सोहराय के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराय पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप घुसती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों के बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हें को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं।
3: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में, हर जगह पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं जिससे

0: वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें।
1: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी आते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचूं लाइफ जिंदगी सार्थक है और बार बार यही सोचूं कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे तो बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपनी पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहां लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है TFA का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
0: हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
4: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुरती जिस
3: उसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का

0: किताब उठाया है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
1: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
0: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल, सिनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4,000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहां पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
1: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
2: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
1: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत, प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहाँ प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहाँ खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहाँ संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहाँ विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।
3: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में रूपक इस्पात संस्कृति और सपनों के शहर जमशेदपुर की नवरंगी पहचान, आलेख शाहिद अनवर का, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी, संयोजन राजेश कुमार राय। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है जिले की चिट्ठी, अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। छिंदवाड़ा और नवगठित पांडुना जिले की आबोहवा में इन दिनों विकास, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की नई बयार बह रही है। खेतों में लहलहाती उम्मीदों से लेकर पर्यटन के नए क्षितिजों तक और युवाओं के भविष्य को संवारने से लेकर आम जनमानस की सुरक्षा तक जिले में बहुत कुछ खास हो रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति ने नई चादर ओढ़ ली है। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले में वन विभाग द्वारा व्यापक पौधरोपण अभियान का शंखनाद कर दिया गया है। जिले के हरित आवरण को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इस वर्ष दोनों जिलों में कुल 22,55,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मुख्य वन रक्षक कमल अरोरा के अनुसार हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमियों को पुनः हरा भरा करने के लिए 3,69,000 सागौन के रूट शूट चरणबद्ध तरीके से लगाए जाएंगे। मॉनसून की पहली बारिश के साथ शुरू हुआ ये महाअभियान जैव विविधता को समृद्ध करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जुनारदेव के वनग्राम कालीमाती में गायत्री परिवार के तत्वाधान में 1100 पौधे रोपे गए। यहां वन विभाग की भूमि पर पंचमटी, त्रिवेणी और 9 पौधों की नवग्रह वाटिका स्थापित की गई है। वहीं परासिया में एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। वीरान पहाड़ी पर हरियाली लगाने के लिए सीड बॉल, गोबर और मिट्टी की गोलियों का उपयोग हो रहा है। बारिश में भीगने के बाद इन गोलियों के भीतर मौजूद बीज आसानी से अंकुरित हो जाएंगे। पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बबुआ यादव ने शनिधाम समिति को ये सीड बॉल भेंट किए हैं, जो कोल इंडिया की पूर्व सीएमओ डॉ जयश्री राय द्वारा बेंगलुरु से मंगवाए गए थे। अब बात करते हैं माटी से जुड़े हमारे अन्नदाताओं की। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत परासिया विकासखंड के ग्राम उमरेठ के युवा प्रगतिशील किसान संदीप पवार ने वैज्ञानिक खेती की एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर हरी मिर्च, करेला और शिमला मिर्च का बंपर उत्पादन किया है। उन्होंने 11,50,000 रुपए की लागत लगाकर 24,75,000 रुपए की आय प्राप्त की है। उनका शुद्ध लाभ पूरे अंचल के किसानों के लिए एक नजीर बन गया है। दूसरी ओर मॉनसून की देरी से खरीफ फसलों की बोनी भले ही थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन कभी पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन का रकबा इस वर्ष बढ़कर 9,000 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। बारिश और जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जिले ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 132% हासिल करते हुए 64,000 से अधिक कार्य पूरे किए हैं। पांडुना जिले में भी इस अभियान का भव्य समापन जन भागीदारी के साथ हुआ। पांडुना के ग्राम पंचायत भवन तेगांव में जगन्नाथ नेत्रालय द्वारा एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 105 मरीजों की जांच की गई और 25 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चुना गया। अब बात करते हैं पर्यटन की, जो इस क्षेत्र की नई पहचान बन रहा है। तामिया के पातालकोट की वादियां इस बार अगस्त माह में पहली बार 3 दिवसीय सावन महोत्सव की गवाह बनेंगी। पर्यटकों को यहां सावन के विशेष झूले, बैलगाड़ी की सवारी और हस्तशिल्प प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। वल्चर प्वाइंट, चीड़ प्वाइंट और छोटा महादेव में ट्रैकिंग के जरिए रोमांच का तड़का भी लगेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन के लिए पांडुना के भूमा और जामसावली गाँव का चयन किया है, जहाँ होम स्टे विकसित कर युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिले के जामसावले स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर हनुमान लोक में इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित दर्शन कर सकें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की पहल पर 12वीं और स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी अब महानगरों में MCA, BTEC और LLB जैसी उच्च शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। रोजगार के मोर्चे पर छिंदवाड़ा ITI के एक प्लेसमेंट ट्राइब में 139 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 52 पुरुष और 87 महिलाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। इसके अलावा युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांडुना के PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की रोकथाम पर एक अहम कार्यशाला आयोजित की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

श्रोताओं, वंदे मातरम गीत से सदियों से सुप्त भारत देश जाग उठा था और आधी शताब्दी तक यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। इस राष्ट्रगीत की धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई। इस राष्ट्रीय गीत का महर्षि अरविंद द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी गद्य अनुवाद का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ ओ माता, पानी से सींची, फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत, कटाई की फसलों के साथ गहरी माता। उसकी रातें चांदनी की गरिमा में प्रफुल्लित हो रही हैं। उसकी जमीन खिलते फूलों वाले वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई है। हंसी की मिठास, वाणी की मिठास, माता वरदान देने वाली, आनंद देने वाली।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:10 होने को हैं। विश्व दर्पण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में बातचीत जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की आशा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। स्पेन और बेल्जियम फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो इस समय जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया, जो उनके आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन इस्ताना मर्देका में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक है। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इस वार्ता से भारत और इंडोनेशिया अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ. जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ. जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती।
4: जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने POK के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा की जा रही कार्रवाई और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी बलों की बर्बरता तेज हो गई है। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 600 से अधिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी के नेता नंबरिन एनखबियार ने भारत समर्थित दोर्नोगोवी तेल शोधन संयंत्र परियोजना के निर्माण में हुई प्रगति की सराहना की है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की ऋण सीमा के समर्थन से कार्यान्वित की जा रही मंगोल तेल रिफाइनरी परियोजना मंगोलिया की सतत ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण घटक और प्रमुख पहलू है। मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे ने मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति के साथ दोर्नोगोवी स्थित तेल शोधन संयंत्र परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया और इंजीनियर्स इंडिया, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा मंगोल रिफाइनरी के इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत की। दूतावास ने बताया कि मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति ने इस विशाल परियोजना के निर्माण में हुई प्रगति की सराहना की। दूतावास ने कहा कि ये परियोजना भारत मंगोलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी तथा मंगोलिया को सतत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वेनेजुएला में आए 2 भूकंपों से क्षति 37 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है। इस आंकड़े में घरों, व्यवसायों, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सुविधाओं सहित इमारतों को हुए नुकसान का लगभग 24 अरब अमरीकी डॉलर और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का 13 अरब अमरीकी डॉलर शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी वेनेजुएला सरकार के समन्वय से भूकंप प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया कि इस आपदा में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। यूनिसेफ ने आपातकालीन टीमें तैनात की हैं और चिकित्सा सामग्री, पानी तथा स्वच्छता उपकरण और आवश्यक घरेलू सामान सहित 68 टन आपूर्ति भेजी है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत ने 184 अंक के साथ उप विजेता का स्थान हासिल किया जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में बेल्जियम ने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में स्पेन से खेलेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में बातचीत जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की आशा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। मांगें पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। स्पेन और बेल्जियम फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। सारंगा सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश का नमस्कार। तो साथियों, शुरू करते हैं गीतों का और आपके पत्रों का सिलसिला। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सोहनी महिवाल से। इसे आवाज़ दी है आशा भोसले और अनवर ने, आनंद बख्शी के बोल और अनु मलिक का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं झांझरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी और गणेश हार मावकर। साथ ही हमें बेमित्रा से भी पत्र प्राप्त हुआ है और हमारे ये श्रोता हैं सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से भी पत्र भेजा है। और भेजने वाले हमारे ये श्रोता हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी, बच्चू शेख, बेगम इशरत, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन, पूनम कुमारी शर्मा, चीनी शेख, कुआद बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर, नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमेरा अबीहा, अरहान बाबू, हमजा और मुजम्मिल।
6: सो योर प्लेस और माइन।
7: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
6: कॉन्डम? लेकिन हम तो
7: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
6: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
8: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, अभी आपने ये संदेश सुना, इस संदेश के बाद आइए सुनवाते हैं आपका पसंद का गीत।

नर्मदा कॉलोनी मंडला से डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा गोल्डी रोली लक्की श्वेता परू, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाविया सारथी, श्रीमती सुषमा सारथी, बिलहरी बड़खेड़ा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, प्यारे बारे लाल बढ़ई, शेख मुनीर, ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, संजय पुरी, साथ ही छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार। हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है फिल्म प्रेम रोग का गीत। स्वर लता मंगेशकर और सुरेश।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल से। एआर रहमान ने इस गीत की धुन बनाई, सुखविंदर और सपना अवस्थी का युगल स्वर, गुलजार के बोल, और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं ने हमें पत्र भेजे हैं उनके नाम हैं जबलपुर बर्गीनगर से रविंद्र गर्दे, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग व सृष्टि, विवेक, वंदना, लव और कुश। साथ ही हमें पत्र प्राप्त हुआ है, ये हमारे श्रोता हैं सिंहपुर बड़ा से, और हमारे नियमित श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। साथ ही कमर कॉलोनी बड़वाह से हमें पत्र भेजा है प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने।

चांदी चौक गणई पड़रिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और यहीं से पत्र भेजने वाले श्रोता हैं रौनक सेन। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। हमारे इन सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म क्रोधी का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई और आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

फरमाइशी फिल्म संगीत सारंगा की अंतिम पेशकश फिल्म रॉकी से आरडी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई। आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का स्वर। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जरूड़ वरुड़ महाराष्ट्र से, बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, चंद्रप्रभा वाडोदे, पिंडरई मंडला से सुमत कुमार जैन, मीना जैन, कबीर वरुण और काव्या जैन, साथ ही सर्रई केवलावरी से कमला प्रसाद शर्मा और उनके परिवार के सदस्य, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, नास प्रवीण और चांदनी नाज।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा अब संपन्न होता है। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। न्यूज़ हेडलाइंस कुछ ही समय बाद आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया यात्रा के दूसरे दिन आज कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के बीच बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के संसद भवन में एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान 100 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। इनमें से 3,989 तीर्थयात्री बालतल मार्ग से और 4,826 तीर्थयात्री पहलगाम मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस साल से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और थाईलैंड में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते। महिला वर्ग में भारत ने 184 अंक के साथ उपविजेता का स्थान हासिल किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: ग्रंथ होता है, हमारे संस्कारों की पहली पाठशाला। हमारे मन का सबसे आत्मीय कोना होता है हमारा गांव, हमारा शहर। और हर गांव की एक अपनी धुन होती है, हर शहर का एक अपना राग होता है। दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाएं, उस धुन को, उस राग को सुनते ही मन का मौसम सुहाना हो उठता है, मन खिल उठता है। सच तो ये है कि समय की अनेक परतें बिछी होती हैं हमारे शहर या गांव के आंगन में, जिसमें छिपी होती हैं हमारी परंपराओं की रंगत, उसके इतिहास की गुनगुनाहट। कभी किसी नदी का तट किसी जगह की पहचान बन जाता है, कभी उसका प्राकृतिक सौंदर्य उसकी विशेषता बन जाता है, कभी मंदिर, किले या बावड़ियां बीते कल की कहानी कहते हैं, कभी किसी लोक कला की चहक, किसी मेले की रौनक या किसी खास व्यंजन का स्वाद उस स्थान का सबसे सुंदर परिचय बन जाता है। तो आज इस फोन इन कार्यक्रम में हमें बताइए कि आपके शहर या गांव की वो कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको सबसे अधिक गर्व है, या जिसकी वजह से आपको अपना शहर, अपना गांव, अपना रहने का स्थान अच्छा लगता है। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बात आपके शहर, आपके गांव की खास पहचान के बारे में। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कैसे हैं
1: जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
0: तो आज का जो
1: आपको बताऊँ, 2005 से आकाशवाणी भोपाल का नियमित श्रोता हूँ।
0: अच्छा, तो चलिए, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हो गए। आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, हम बात कर रहे हैं आपके शहर, आपके गांव की। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है आपके रहने के स्थान में जो आपको गर्व महसूस करवाती है, या जिस बात से आपको अच्छा लगता है अपना गांव या अपना शहर। तो आपने बताया कि आप बछोड़ा के रहने वाले हैं, ये उज्जैन से कितनी दूर है?
1: जी, उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, एकदम साफ सुथरा क्लीन शहर है गांव है हमारा।
0: अच्छा,
1: पेड़ पौधे हैं, काफी बगीचे हैं हमारे यहाँ पर, और मतलब आपको बताऊँ, एकदम शांत स्वभाव के लोग रहते हैं यहाँ पे, और पानी की उचित व्यवस्था है हमारे पास, पीने के लिए भी, इस्तेमाल के लिए भी, सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है।
0: जी जी, आपने कहा बाग बगीचे बहुत से हैं, किस चीज के हैं?
1: जी, जैसे कि आम के काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, उसके साथ में ऑरेंज के जो बगीचे होते हैं ना जी, उसके मतलब आपको काफी बड़े बड़े मतलब पैमाने पर लोगों ने खेतों में अपने ऑरेंज लगा रखे हैं।
0: तो
1: उससे मतलब काफी हरियाली है हमारे गाँव, और हम तो जहाँ पर रहते हैं, हमारा गांव का मतलब ऐसा विकास हुआ है कि पिछले 5 सालों में सड़कें बन चुकी है, नालियां बन चुकी है, साथ में बिजली की व्यवस्था पूरी है, तो हमें अपने गांव पर पूरा गर्व है।
0: क्या बात है, तो आपका जो गांव है वो बहुत ही साफ है, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो जाहिर सी बात है कि जो गाँव के लोग हैं उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना?
1: जी बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना
0: जी,
1: तो इसमें मतलब ऐसी कोई समस्या वाली बात भी होती है तो सुलझा लेते हैं।
0: तो आपके गांव का जो बाग बगीचा है, जो सफाई है, और आपने बात की अपनेपन की, कि लोगों के बीच बहुत अपनापन है, अपनत्व है, तो इस वजह से आपको आपका गांव प्यारा लगता है, तो ये बना रहे।
1: कहीं जाते भी है ना
0: जी,
1: तो 2-4 दिन में वापस अपने ऐसा लगता है कि जल्दी से घर जाए, अपने परिवार वाले से मिले और अपने गांव में रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कहीं चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में हों हम, कितनी भी सुविधाएं हों, लेकिन अपना गांव, अपना शहर, अपना घर बहुत याद आता है ना?
1: जब घर पे आ जाते हैं, कपड़े चेंज करके बस आराम से बैठ जाते हैं, तभी सुकून मिलता है।
0: चलिए, आपके गांव में आपको सुकून मिलता रहे, और जिस विशेषता को आपने यहाँ आज कहा है कि ये एक साफ गांव है, ये हर तरह से सुविधाओं से भरा गांव है, और इसमें पूर्णतः जो विकास हुआ है वो भी हुआ है, रोड अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, आगे और भी व्यवस्थाएं अच्छी होती चली जाएं, ये हमारी कामना है। अपने गांव से इसी तरह का प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा प्रेम सिंह जी आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नाम बताइए।
1: तारूलाल सुतार।
0: तारूलाल सुतार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: दारू गांव से बोल रहा हूँ, नीमच जिले के पास में गांव है अपना, जिला नीमच, मध्य प्रदेश।
0: दारू गांव, अच्छा।
1: हाँ,
0: तो भाई देखिए, आज बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपके गांव की, आपके शहर की। हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में अगर कोई ऐसा प्रसिद्ध स्थान हो या जो भी विशेषता आपको लगती हो वो आप आज इस मंच पर रख सकते हैं। क्या खास है आपके गांव में?
1: हमारे गांव में देवनारायण जी का मंदिर है, नागराज का मंदिर, वो बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर से यात्री आते हैं वहाँ।
0: अच्छा।
1: शनिवार के दिन तो मेले जैसा लगता है वहाँ।
0: अच्छा, नागराज जी का मंदिर।
1: हाँ, देव नारायण जी नाम है, देव नारायण नागराज का मंदिर है।
0: अच्छा, देव नारायण नागराज।
1: शनिवार के दिन बहुत भक्तगण आते हैं वहाँ। और पास में, गांव के पास में नदी है।
0: नदी है, कौन सी नदी?
1: हाँ, गांव के पास में एक नदी है, बिल्कुल गांव से लगती हुई, बिल्कुल गांव के किनारे, गांव उसी के किनारे पे है।
0: क्या
1: जब वो नदी में पानी देता है ना, इतना मस्त लगता है कि आप देखते ही जाओ।
0: तो ये बताइए कि ये जो मंदिर है इसमें किसकी पूजा होती है? नाग देवता की।
1: हाँ, नाग देवता की पूजा शनिवार के दिन पूजा होती है उनकी। वो रोज तो फिर साफ सफाई नहीं करते हैं।
0: अच्छा।
1: और शनिवार खास रहता है उनका।
0: तो एक मेले सी रौनक होती है, आप बता रहे हैं। तो चलिए,
1: हाँ।
0: बहुत अच्छा लगा तारूलाल जी आपसे बात करके। आपने बताया कि
1: हाँ।
0: आपके गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है जिसमें दूर दूर
1: हाँ।
0: से लोग आते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं, और नागराज
1: आप
0: की इसमें पूजा होती है।
1: आप भी आना कभी, आपका भी स्वागत रहेगा।
0: जरूर जरूर। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि नदी किनारे बसा एक गाँव जहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपके गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, बहुत आभार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं डीएस परिहार, ग्राम लभौली, जिला रीवा।
0: डीएस परिहार जी ग्राम लभौली से बोल रहे हैं
1: जी,
0: कैसे हैं?
1: मुझे ठीक है, हाल चाल सब ठीक है।
0: और आपका गांव लभौली कैसा है?
1: गांव एक छोटा सा गांव है, ज्यादा कोई विकसित नहीं है।
0: छोटा सा गांव है लेकिन लोगों के बीच एक आत्मीयता तो होती ही है ना, ये भी एक विशेषता होती है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि आपके गांव की कोई खास बात आप बता सकते हैं, या परंपरा में कोई लोकगीत हो, कोई व्यंजन हो, कोई धार्मिक स्थल हो, कोई ऐतिहासिक स्थल हो, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं आज के कार्यक्रम में।
1: ऐसा कुछ नहीं इधर,
0: कुछ व्यंजन तो हो ही सकता है। है ना, कोई व्यंजन तो होगा जो आप लोग आपस में बनाते खाते होंगे, परिवार में बनता होगा, खास अवसरों पर बनता होगा।
1: सब बनते रहते हैं, दाल पूड़ी बनती है और निकमच बनता है, दरहर बनती है।
0: दाल पूड़ी इनरहर, वाह। आपने तो बहुत ही अच्छे दो पकवानों का नाम ले लिया। देखिए बघेलखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है इनरहर।
1: हाँ, रसाज है ये सब बुंदेलखंड का, बघेलखंड का जैसा बोल
0: जी,
1: रहे आप।
0: जी जी जी
1: रेसिपी जो है बहुत वैसा है।
0: तो आपको क्या पसंद है इनमें सबसे ज्यादा?
1: मैं रिकमच में भी खाता हूँ हमेशा, एक हफ्ते में एक बार खाता हूँ।
0: क्या खाते हैं?
1: रिकमच।
0: रिकमच ये कैसे बनता है?
1: वो दाल से ही बनती है।
0: दाल से?
1: मूंग की, हाँ मूंग की दाल।
0: मूंग की दाल से रिकमच। मीठा होता है या नमकीन होता है?
1: नहीं नहीं नहीं, ये तो सब्जी होती है, इसकी मसालेदार सब्जी बनती है।
0: अच्छा। तो ये पारंपरिक व्यंजन है आपके गाँव के, है ना, जो शादी ब्याह के समय भी आप लोग बनाते होंगे।
1: शादी वगैरह में तो ये सब बनता रहता है अक्सर।
0: इंद्रहर की आपने बात की है, ये भी एक बड़ा ही प्रसिद्ध वहाँ का व्यंजन है, है ना?
1: जी हाँ।
0: क्योंकि देखिए हम तो भोपाल में रहते हैं, तो जब कभी इस तरह का अवसर आता है कि बघेलखंड का कोई व्यंजन हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो हम अक्सर जो इंद्रहर है इसकी फरमाइश कर लेते हैं। तो चलिए, एक स्थान अपने व्यंजन की वजह से भी जाना जाता है और ये भी हमारे संतोष और गर्व का विषय होता है। तो परिहार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इसी तरह बने रहिए।
1: धन्यवाद।
0: बने रहिए आकाशवाणी।
1: दो दिन में लगाता हूँ, अक्सर बिजी रहता है।
0: हाँ, लेकिन आज बात हो गई, बहुत अच्छा लगा और बहुत जायकेदार बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरबिलास सिंह तोमर बात कर रहा हूँ।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम इस कार्यक्रम में। आपने बताया कि आप मुरैना के रहने वाले हैं, खास मुरैना के रहने
1: तरसमा गाँव है मुरैना में।
0: मुरैना के पास तरसमा गाँव में रहते हैं आप
1: जी।
0: तो देखिए, आज तो बात हो रही है आपके रहने के स्थान की, इसलिए हमने गाँव को विशेष रूप से पूछ लिया कि आपका जो ये गाँव है इसकी ऐसी कौन सी खास विशेषता है जिस पर आपको गर्व है?
1: जी महोदया, मेरे गांव की खास विशेषता जिस पर मुझे गर्व है कि मेरे गांव में आर्मी में बहुत से लोग सर्विस कर रहे हैं, कम से कम 80% लोग, 17 लोग यहाँ शहीद हो चुके हैं। शहीद स्थली के नाम से मेरा गांव जाना जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, 17 लोग शहीद हुए हैं।
1: शहीद हुए पूरे प्रदेश में पहला गांव इतने सर्विस में, अर्धसैनिक बलों में, सैनिक बलों में, कहीं नहीं, किसी गांव में नहीं।
0: क्या बात है। तो इस गांव की माटी को हम नमन करते हैं, इस गांव की जो माताएं हैं, जो अभिभावक हैं, उनको हम नमन करते हैं कि इतने बच्चों की शहादत के बाद भी एक वो जज्बा आपके भीतर है कि देश की सेवा करना है हमारे बच्चों को, और आप सेना में अर्धसैनिक बलों में भेजते हैं।
1: घर में चार चार बच्चे अभी अर्धसैनिक बलों, मेरे भी 3 बच्चे अर्धसैनिक बलों में सर्विस कर रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा हमें हरविलास जी आपसे बात करके, और वास्तव में मन श्रद्धा से झुक गया है आपके गांव के प्रति।
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। बने रहिएगा आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सुनीता मैडम जी को दिल से नमस्कार, प्रणाम आदाब। और मैं भगवान से प्रार्थना दुआ कर रहा था कि आज हमारी सुनीता मैडम जी से बात हो जाए, तो हो ही गई। कहते हैं लागी लगन लागी लगन हो गया सगुन
0: जी,
1: और मेरा मन हो गया मगन आपसे बात करके। और हम तो आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल के गुण गाने लगे।
0: क्या बात है
1: और गाते थे और गाते रहेंगे।
0: तो एक लगन लगी थी मीरा को, दूसरी लगन लगी है आपको, ये हमें समझ में आया है। तो अपना परिचय तो पूरा दे दीजिए।
1: परिचय बता दूं, कहते हैं ठंडी भी थी और गर्मी भी थी, और अब आ गई बरसात। और मौसम चाहे जो भी हो, हम सुनीता मैडम जी के हमेशा साथ।
0: वाह बिल्कुल।
1: और अब पता बता दूं, हिंदुस्तानी कलाकार यूट्यूब ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना, ईडन गार्डन अशोक वाटिका बोल रहा हूँ। अभी ईडन गार्डन बता दिया, अशोक वाटिका बता दिया, तो सब कुछ आ गया समझ लो, और हिंदुस्तान के दिल से बोल रहा हूँ।
0: तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने कल्पा बताया, सतना के पास से आप बोल रहे हैं, और आज का जो विषय है वो आपके गांव आपके शहर से ही जुड़ा हुआ है। आप हमें बताइए कि आपके शहर आपके गाँव की क्या खासियत है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है या आपको गर्व का अनुभव करवाती है आपके गाँव से जुड़ी हुई।
1: हमारे गांव ग्राम कल्पा जिला सतना की बात की जाए, छोटा सा कस्बा है मैडम जी, और यहाँ के जो लोग बाग हैं, महिलाएं हैं, और बहुत ही भक्त संगीत से ओतप्रोत हैं, जो देवी देवताओं की पूजा इबादत करती हैं और सभी लोगों को मानती हैं जी जान से। और हमारे गांव के आसपास सबसे बड़ा जो है, कहते हैं कि आम का कटोरा कल्पा, आम की यहां प्रसिद्धि है, आम और कैथा, इमली और जामुन।
0: वाह, तो कौन सा आम होता है?
1: मैं बता दूं कि यहां इतने जबरदस्त आम के बगीचे हैं, गार्डन है पूरा, दोनों तरफ से नदी नाले बह रहे हैं। इसीलिए कहा करता हूँ कि लंका में अशोक वाटिका था और कल्पा में चांद मोहम्मद का कल्पा,
0: सतना में कल्पा है। तो आपने कहा कि आम के बहुत से बगीचे हैं और कैथा, और इसके अलावा क्या है?
1: इमली और जामुन।
0: तो ये तो फल फूल से भरा हुआ आपका गांव है। तो कौन कौन से आम होते हैं आपके गांव में?
1: आम तो अब सुनीता मैडम जी बता दूं, यहाँ देसी आम ही होते हैं, पर बहुत ही लाजवाब होते हैं, उसका टेस्ट और स्वाद जो है। यहाँ के आम हमारे ज्यादातर वहाँ कानपुर भेजे जाते हैं और वहाँ बांदा।
0: क्या बात है। तो देखिए, मौसम भी आमों का है ही, और स्वाद ले रहे होंगे आप आम का, आपने बात की तो हमारा भी जो मुंह है वो मीठा हो गया।
1: अगर वक्त मिला सुनीता मैडम जी, तो मैं आपके लिए आम जरूर अपने कल्पा के भेजूंगा, फिर उसका टेस्ट और स्वाद बताइएगा। बहुत ही लाजवाब आम होते हैं देसी, और उसका पना खाइए, मजा आ जाता है, सेहत से भरपूर। और सेहत से भरपूर आप हैं जब कार्यक्रम में आती हैं, तो चांद तो एक ही है, पर जब आप कार्यक्रम में आती तो हजारों चांद होता रहते हैं।
0: क्या बात है। तो चांद मोहम्मद खान जी, आपने अपने गांव कल्पा के विषय में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है कि आप कहीं बाहर जाते होंगे तो गांव की याद आती होगी।
1: अरे आम बस का नहीं मैडम जी, मैं बता दूं मेरे ग्राम कल्पा की एक खूबी और बता दूं, यहाँ पर सबसे मेन खूबी है मैडम जी कि ना तो ठंडी होती है अधिक, ना अधिक गर्मी होती है, और ना अधिक बरसात, सब कुछ मीडियम होता है।
0: तो मतलब एक पूरा मौसम का संतुलन आपके गांव में बना रहता है ना, ये बहुत अच्छी बात है।
1: और मैं एक बात और बता दूं कि आसमान के तारों की गिनती शायद है, और समुद्र की गहराई का अनुमान 9999 मीटर की गहराई का अनुमान मैं बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात। और मुझे जितना प्यार आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल से है, उसका आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है
0: जी। तो चांद मोहम्मद खान जी, आकाशवाणी से आपका जो प्रेम है उसको बना कर रखिए। आपने आज हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: वाह, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से योगेश जी बोल रहे हैं, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया है, अच्छे हैं, और बारिश होना भी अब तो शुरू हो गया है।
0: तो कैसा है आपका बेमेतरा बारिश में?
1: बहुत हो गया है, मतलब कहें तो लगातार 4 दिन से बारिश हो रहा है।
0: तो ये अच्छी बात है कि चलिए बारिश तो शुरू हुई। हम आज जो बात कर रहे हैं, आपके गांव की, आपके शहर की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी खास पहचान है जिस पर आपको गर्व है आपके गांव से जुड़ी हुई?
1: अब हमारा यहाँ गांव एक छोटा सा गांव है, लगभग 1000 की जनसंख्या है, और हमेशा से शांति प्रिय रहा है गांव। कभी किसी तरह का अनैतिक व्यवहार या उस तरह की घटनाएं नहीं हुई है आज तक।
0: तो जी जी जी,
1: अदर अदर मतलब सभी समूह के लोग रहने के बावजूद भी गांव काफी बढ़िया है
0: जी। और आसपास कोई ऐसा धार्मिक या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो, कोई नदी हो?
1: हमारा जो जिला है बेमेतरा, वो गांव से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ माता शीतला और माता भद्रकाली शक्तिपीठ विराजमान है।
0: क्या बात है, तो माता शीतला और माता भद्रकाली का मंदिर है आपके गांव के पास। तो किन किन अवसरों पर कोई खास आयोजन होता है? नवरात्रि में तो होता ही होगा।
1: नवरात्रि के अवसर पर ही होता है, मतलब वही अप्रैल में एक बार, और उधर मान के चलिए
0: अक्टूबर,
1: सितंबर अक्टूबर के आसपास।
0: जी जी जी जी। और इसके अलावा कभी मेले वगैरह भी लगते हैं आपके गांव में?
1: मेला जो होता है पास में ही लगता है, मतलब गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। और गांव में जो होता है वो मड़ई महतर होता है, मतलब जो
0: मड़ई
1: वाला।
0: जी जी जी। तो ये जो मड़ई है ये भी मेले का एक छोटा रूप है ना?
1: हाँ जी, एक छोटा रूप है, और ये ज्यादातर दीपावली के आसपास ज्यादा होता है।
0: तो इस मड़ई में कोई खास क्या रौनक होती है?
1: रौनक तो यही है कि अब साल में एक बार होता है करके लोग आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, और जो भी उसकी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से मतलब करते हैं। जैसे दीपावली हो गया, दीपावली में जो हमारा गोवर्धन पूजा होता है उसमें हमारे जो पशु होते हैं गाय बछड़े,
0: जी जी,
1: तो उनका विशेष महत्व होता है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: जी।
0: तो उस अवसर पर आप लोग एकत्रित होते हैं और पशुओं की पूजा करते हैं, पशुधन की। तो योगेश जी, आपने बताया कि आपके गांव के पास शक्तिपीठ हैं, देवी के 2 मंदिर हैं, और इसके साथ ही अपने गांव में लगने वाले मड़ई की आपने बात की, जिसकी रौनक हमारे स्टूडियो तक भी पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बने रहिए इसी तरह आकाशवाणी के साथ।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं।
1: अनोखे सिंह सर जी।
0: अनोखे सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बाग जिला धार, विराट नगरी है हमारी।
0: बाग जिला धार से आप बोल रहे हैं?
1: हाँ हाँ।
0: तो ये बताइए कि आपके गांव की कौन सी ऐसी खास बात है जिस पर आपको गर्व है?
1: हमारे गांव का विश्व प्रसिद्ध एक बाग गुफा है सर जी, पांडव गुफा बोल।
0: जी जी जी जी जी, आपने धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं की चर्चा की जो कि मुख्य रूप से अपनी प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्रकला और शैलकृत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और बहुत पुरानी गुफाएं हैं ये, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी की ये गुफाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है। तो इस वजह से आपको अपना गाँव, अपना शहर अच्छा लगता है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई।
1: और हमारी बागनी नदी पे महादेव बसे हुए, जबड़ेसर, रन्नेसर, नीलकंठेसर, भूतेसर और महाकालेसर।
0: क्या बात है,
1: बागनी नदी के तट पे।
0: जी जी जी जी, बागनी नदी है?
1: बागनी नदी है सर जी, नर्मदा में इसका संगम है, निसरपुर में।
0: तो चलिए अनोखे सिंह जी, आपने अपने गांव के बारे में बताया जिस पर आपको गर्व है।
1: बड़केसर है, खेड़ापति हनुमान है, ये सब प्राचीन है, ऐतिहासिक है सर जी,
0: जी, जी,
1: कोई धाम है।
0: जी, तो बहुत से धार्मिक स्थल हैं आपके गांव के आसपास, ये जानकर बहुत अच्छा लगा हमें।
1: सर जी किला है हमारे नगर में सर जी।
0: जी जी,
1: और हमारे यहाँ संचालन, हमारे जो सक्षम लोग हैं सर जी, वो अन्य लोगों को सामूहिक लेके बहुत अच्छे से चलते हैं। भंडारा होता है जीरो वाले हनुमान जी, खेड़ापति हनुमान जी, गंगा कोई धाम, तो सब आम जन को आमंत्रित करके बहुत अच्छी सी सुविधा व्यवस्था की जाती है।
0: बहुत अच्छी बात है कि धार्मिक आयोजनों में, भंडारे में आप सब एकत्रित होते हैं और प्रेम के साथ अपना एक समय गुजारते हैं, भक्ति और आस्था के साथ, आनंद के साथ। तो ये आनंद आपके जीवन में बना रहे, ये आस्था आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, अमर सिंह राठौर बोल रहा हूँ मैम, कटनी ग्राम डिठवारा से।
0: अमर सिंह राठौर जी, आप
1: जी
0: बोल
1: जी
0: रहे हैं बिठवारा से, कटनी के
1: जी
0: पास
1: जी
0: ही गांव है।
1: जी
0: कैसा
1: जी
0: है आपका गांव? क्या खास बात है इस गांव की?
1: मैम, मेरे गांव के पास मैम पुरातत्व विभाग का जुगिया बाबा के स्थान है मैम।
0: जुगिया बाबा।
1: जी जी जी प्राचीन विष्णु मंदिर था वहाँ पे, आज भी वहाँ पे पुरातत्वकालीन की ईंटे, छोटी छोटी ईंटे लगी हुई हैं और स्थान उनका बना हुआ है। और प्रतिमाएं तो चोरी चली गई हैं आज से करीब 20-25 साल पहले।
0: जी
1: अच्छी
0: जी
1: प्रतिमाएं थी, 5-5 फुट की 2-3 प्रतिमाएं थी, हमने देखा है उनको। और वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन अच्छा मेला लगा करता था, खूब
0: अच्छा
1: लोक नृत्य हुआ करते थे।
0: अच्छा
1: हम लोग यहाँ दिवारी का नृत्य होता है जो फेमस है हमारे गाँव में,
0: देवारी लोक नृत्य,
1: हाँ हाँ जो यादव लोग करते हैं ना, ग्वाल लोग।
0: ये दिवाली के आसपास करते हैं ना?
1: जी जी जी हाँ, और मकर संक्रांति के टाइम भी वो लोग वहाँ नृत्य किया करते थे।
0: अच्छा, तो
1: और
0: दीपावली के
1: जी जी
0: आसपास भी करते हैं और
1: जी
0: मकर
1: जी, जी
0: संक्रांति के
1: समय
0: अवसर पर
1: होता
0: भी
1: था
0: करते
1: बात।
0: हैं। कैसी वेशभूषा होती है उनकी?
1: शायद मैम वो मोर पंख वगैरह लगाते हैं,
0: जी
1: लड़ियाँ पहनते हैं,
0: हाँ हाँ
1: लच्छेदार, वो बढ़िया अच्छे उनके वस्त्र चमकीले टाइप के रहते हैं,
0: जी जी जी जी
1: पंख पंख लगा के नाचते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और जो ढोलक की थाप बजती है, मदार उनकी,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह
1: अच्छा लगता
0: वाह
1: है।
0: वाह, ढोलक मादर के साथ दीवारी
1: जी जी
0: नृत्य, आपने तो एक बिल्कुल सुंदर सा एक दृश्य खींच दिया है।
1: जी
0: वैसे मुझे जो हल्का सा याद आता है कि यही लोग शायद दीपावली के अगले दिन आकर घरों की नजरें भी उतारते हैं ना,
1: हाँ हाँ जी जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल यही लोग करते
0: है ना?
1: हैं,
0: बताइए, कैसी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शुभ मंगल की कामना है कि दीपावली के बाद ये आते हैं यादव समुदाय के लोग
1: जी
0: और
1: जी मैम,
0: घरों में, अलग अलग घरों में जाते हैं और उन घरों की नजर उतारते हैं,
1: हाँ
0: है
1: ये
0: ना?
1: होता मैम गांव में तो अक्सर होता है, शहर में तो नहीं पता,
0: जी जी
1: पर
0: जी
1: गांव
0: जी
1: में तो हर घर में वो लोग आते हैं
0: क्या बात है।
1: और
0: तो
1: उपहार वगैरह ले जाते हैं घर से वो लोग,
0: हाँ हाँ
1: उनका ये
0: बिल्कुल
1: पूरा निश्चित रहता है।
0: जी जी तो अमर सिंह राठौर जी, आपने बिठवारा गांव की जो विशेषता बताई हमें, बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मूर्तियां अब नहीं है वहां, लेकिन एक ऐतिहासिक स्थल

0: के हैं, है ना।
1: वाह
0: और
1: बिल्कुल
0: आपने मेले की बात की और देवारी नृत्य की बात की, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें आपके गर्व का विषय हैं। तो ये गर्व आपके मन में बना रहे, अपने स्थान से प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फ़ोन किया।
1: जी, थैंक यू।
2: सुनो।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार दीदी, प्रणाम। मैं कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ दीदी।
0: कोदवा साजा छत्तीसगढ़?
1: छत्तीसगढ़, हाँ दीदी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या विशेषता है आपके गांव की, आपके छत्तीसगढ़?
1: छत्तीसगढ़ तो हमारा यहाँ भाषा भी प्रिय है, छत्तीसगढ़ी बोली जो बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया।
0: छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बिल्कुल।
1: यहाँ का जो अपना चावल जो रात में डुबाते हैं ना बासी, उसी ज्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में। बासी बोरे बासी बोलते हैं जिसको,
0: बासी खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
1: यहाँ का जो अपना सब्जी है भाजी जिसको बोलते हैं हरी हरी सब्जी, हाँ यहाँ फेमस है अपन छत्तीसगढ़ में खाने का।
0: ये भाजियाँ आपको अच्छी लगती हैं और बासी खाने की एक परंपरा है वहाँ पर, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ। और यहाँ तो त्योहारों में अलग अलग प्रकार के सब कलेवा बनाते हैं दीदी।
0: क्या क्या बनाते हैं?
1: जैसे अपना तीजा पोलवा के जिसको खुरमी ठेठरी बोलते हैं, चावल अपना इसका गेहूं आटा बनाते हैं दीदी, उसमें अपना खुरमी, अच्छा चना बेसन का जो बेल के लंबा लंबा ठेठरी बनाते हैं, इधर बहुत प्रचलन है दीदी छत्तीसगढ़ में।
0: जी जी, तो बहुत से पारंपरिक आपके जो पकवान हैं वो बनाए जाते हैं अलग अलग त्योहारों में।
1: हाँ,
0: आपने बोली भाषा की बात की, छत्तीसगढ़ी बोली की बात की है, तो
1: हाँ।
0: हमें लगता है कि कुछ पंक्तियाँ आप छत्तीसगढ़ी में बोल दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: दीदी अब ठीक है, चलो बोल ही रहा मैं आपसे। दीदी आपसे मैं तो बोला था छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना? हाँ, आप मन बढ़िया, आप अच्छा रहा, अच्छा से बढ़िया, भैया मन से भी रहा, बढ़िया बात करत हम तुहर मन से, मन अच्छा लगत है, मतलब जुड़ के तुहर मन से, आप मन से जुड़ के इतना प्यारा प्यारा प्यारा बात सुने मिलते हमारा आकाशवाणी भोपाल में, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर गीत भी सुने मिलते हमन ला।
0: बहुत बढ़िया, तो आपने भाषा बोली का एक रंग हम तक पहुंचाया, बहुत अच्छा लगा। और आपने जब बोला तो मुझे तीजन बाई जी की याद हो आई।
1: हाँ दीदी, इनका देहांत हुआ दीदी
0: जी जी
1: भाई का,
0: 5 तारीख को जिनका
1: पंडवानी गायिका थी, बहुत
0: हाँ, विश्व प्रसिद्ध पंडवानी
1: दीदी। हम लोग बचपन करीब 8-9 साल के तब के प्रोग्राम सुनते हैं, तो मैं मेरे पास में भी लाउड स्पीकर था पहले, मैं कम से कम 10-15 साल लाउड स्पीकर बजाया घर का, मेरा पंडवानी बहुत फेमस था दीदी।
0: बिल्कुल, तो पंडवानी को विश्व स्तर पर पहुंचाने वाली वो शख्सियत थी, लोग
1: हाँ,
0: की एक बुलंद आवाज
1: थी। गए दीदी, वो अपना प्रेजेंट भी पाई, इनाम भी मिला, पदक भी मिला उनको।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से वो एक ऐसी कलाकार थीं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की जब बात हुई तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ये लोक नाट्य विधा है पंडवानी, उस पर आपको अवश्य गर्व होगा और अपनी उन कलाकार पर गर्व होगा जो 5 तारीख को हमें छोड़कर चली गई। तो बहुत अच्छा लगा रामस्वरूप गुप्ता जी ने हमें फ़ोन किया और छत्तीसगढ़ का रंग इस कार्यक्रम में बिखेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और श्रोताओं, अपनी मिट्टी से जुड़ाव ही वो डोर है जो दूरियों के बावजूद हमारे मन को अपनी जड़ों से बांधे रखती है। शहर बदल जाते हैं, गांव बदल जाते हैं, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा गांव, हमारा शहर पूरी आत्मीयता के साथ हमारे भीतर धड़कता रहता है। आज आपने अपने शब्दों से अपने अपने शहरों और गांवों की जो सुंदर तस्वीर उकेरी, उसमें हमारी विविधता, हमारी संस्कृति और आत्मीयता के रंग मुस्कुराते रहे। आपके शहर, आपके गांव की ये रंगत आपके मन में हमेशा यूं ही बनी रहे, खिली रहे और आप उससे हमेशा यूं ही जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इजाजत दें इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को है। लीजिए आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोची में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी और अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंगहम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दिन का 12 बजा है और ये समय है आपकी फरमाइश का। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए इस फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। ग्राम अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे लोग इसी गाने को पसंद किया है। भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने।

और ये अगले गाने के लिए जो हमारे पास में फरमाइश आई है, इन्होंने बहुत ही पुराना गाना सुनना चाहा है, फिल्म आन का जो 1952 में रिलीज़ हुई थी। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखने वाले हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, शुभ चंद्र और बिट्टा बजाज सहित इनके परिवार के दूसरे लोग। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है ये घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। और ये फरमाइश है कवर कॉलोनी बड़वा, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत, आन फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है और नौशाद का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, छत्रपति संभाजी नगर से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और इन्होंने फरमाइश की है नई सड़क एमपी शाजापुर से लिखने वाले हैं एमएम राजावत, राज मधु राजावत, शशि रक्त।

अभिषेक, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, कुरबाई ज़िला विदिशा से लिखने वाले हैं रियासत खान, सगीर खान, ज़फ़र खान, निकलेश सक्सेना और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

ये फिल्म का नाम है। आवाज़ें हैं मोहम्मद अज़ीज़ और साधना सरगम की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महादेव घाट अम्बलेश्वर से। लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। भोपाल गौतम नगर से लिखने वाले हैं पंडित मनवेश शर्मा, दीपू शर्मा, विनायक शर्मा। और भोपाल कोलार से यह लिखने वाले हैं अक्षिता, अनुष्का शर्मा, नरेश, ममता जैन, हेमा, करुणा और अमन। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं ये राइटिंग कुछ साफ सी नहीं है, तो चलिए हम दूसरा पत्र शामिल कर लेते हैं। करूला मुबारकबाद से लिखने वाले हैं अय्यूब खान, एरम, गुड़िया, शोएब खान और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से लिखने वाले हैं प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम खुदा खुदगर्ज़।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से में। धारावाहिक हंसना है हंसना मना है, इसकी छठवीं कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक संस्था ने एक सेठ जी के सम्मान करने का विचार अपने मन में लिया, तो साहब दो चार पांच लोग उनके दरवाजे पहुंच गए। सेठ जी बड़े पैसे वाले थे, सम्मानी व्यक्ति थे, लेकिन उनका सम्मान आज के पहले कभी हुआ नहीं था। आज तक किसी ने उनको माला नहीं पहनाई थी। खैर, ये संस्था वाले पहुंच गए और सेठ जी से कहा, सेठ जी ऐसा है कि हमने कई बार आपसे चंदा मांगा, 50 मांगा, 100 मांगा, 200 मांगा, और आपने बड़े प्रेम से हमको दे दिया। इसके लिए आप हमारा धन्यवाद स्वीकार करें, और इस बार हम चाहते हैं कि आपका सम्मान किया जाए, है ना। तो चंदा तो खैर आप देंगे, लेकिन थोड़ा इस बार चंदा आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान में करीब करीब 150 मालाएँ हम आपको पहनाएंगे, उसमें बड़ी मालाएँ, छोटी मालाएँ। अरे आपको तो इतनी माला पहनाई जाएगी सेठ जी कि आपका सिर्फ छोड़ा थोड़ा सा मुँह भर दिखेगा। हाँ, इतनी मालाएँ। अरे सेठ जी बड़े ग्लैड, उन्हें 150 माला का पैसा दे दिया और ऊपर से और भी बहुत सारा चंदा उंदा दे दिया। ठीक है साहब, अनाउंसमेंट हो गया, 27 तारीख को रामलीला मैदान में फलाने फलाने सेठ जी का नगर सम्मान किया जाएगा। चलो साहब, पहुंच गए सब लोग, तालियां बजी, मालाएं पहनाई गई, और ये हुआ वो हुआ, सब जो कुछ होना था। लेकिन क्या देखा गया, जो फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे वो सेठ जी के चेहरे को बार बार पढ़ रहे थे। तो चेहरे को पढ़ के एक फोटोग्राफर उनके पास जाता है और कहता है, क्यों सेठ जी, एक बात बताइए, आपका इतना सम्मान हो रहा है, आप तो बड़े खुश होंगे। तो सेठ जी बोलते, क्या खाक खुश होंगे हैं, अरे इन लोगों ने मुझे 150 मालाएं पहनाने का वादा करके पूरा 150 माला का पैसा लिया था मुझसे, लेकिन अभी तक, और क्या, आप तो बिल्कुल हो गई बात खत्म, सिर्फ 35 मालाएं पहनाई हैं। रेडियो से विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं, क्यों दुकानदार देते हैं? वो इसलिए देते हैं कि उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके, उनका नाम हो, पैसे ज़्यादा मिले उनको। वैसे भी आजकल रेडियो गांव-गांव तक सुना जाता है, यहाँ से सैकड़ों हजारों मील तक लोग रेडियो को बड़े प्यार से पूरी मोहब्बत से सुनते हैं, और विज्ञापन जब गांव-गांव पहुँचेगा तो स्वाभाविक भाई सामान तो बिकेगा, दुकानदार का नाम, व्यापार का नाम, सब कुछ। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक श्रीमान जी हमारे घर पहुँचे और मुझसे कहने लगे, भाई साहब ऐसा है कि अभी मैंने रेडियो में विज्ञापन सुना, टेलीविज़न पे दूरदर्शन वाले भी विज्ञापन देते हैं कि साहब ये सामान खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, ये खरीदो तो वो फ्री मिलेगा, तो साहब ऐसा कुछ ऐसा विज्ञापन आप हमारे लिए भी बना दें तो हम भी रेडियो से दे देंगे, टेलीविज़न की भी कोशिश करेंगे। तो मेरा तो साहब उस समय बड़ा दिमाग ख़राब था, प्रोग्राम वगैरह के चक्कर में थोड़ी व्यस्तता थी, कुछ सिर में दर्द भी था। हमने ठीक है बैठिए, बना देता हूँ विज्ञापन, लेकिन बार बार नहीं बोलना आप, एक बार में इसको फाइनल करना। अरे कहले, आप तो जो बना दोगे आप तो दे दो, मैं तो उनको पहुँचा दूंगा, अरे मेरा माल बहुत बिकेगा, आप विज्ञापन बनाइए। तो फिर मैंने विज्ञापन क्या बनाया, जरा सुनिए, मैंने विज्ञापन बनाया, खुशखबरी, खुशखबरी, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को, 90 वर्ष के बुजुर्ग पति पत्नी को 1 किलो बिस्कुट बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, बशर्ते कि वे अपने माता पिता के साथ हमारी दुकान में पधारे।
2: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
3: वैराग्य का ये आइटम कि जिसमें एक बहुत ही अच्छा युवक है, संस्कारिक है, और वो एक संत के पास जाता है, संत पहाड़ी पर रहते हैं और बब्बा बजरंग के पुजारी बिल्कुल गृहस्थ आश्रम से दूर, बड़ा उनका ज्ञान उसने लिया और अपने जीवन को धन्य किया। एक दिन वो लड़का गुरुजी से विनम्र भाव से प्रार्थना करता है और क्या कहता है, गुरुजी वो हम आते हैं तो, हाँ हाँ बोलो वत्स, क्या बात है, नहीं हम आते हैं तो रास्ते में एक लड़की रहती है तो वो हमको बहुत देखती है और मतलब कई प्रकार की मतलब बातें करती है और हम कहाँ तक सुने गुरुजी। वत्स कदापि नहीं, ऐसा करना ही नहीं, ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये तो माया जाल है, इसमें फंस जाओगे फिर कुछ नहीं कर सकते। एक काम करो, तुम रास्ता बदल दो, दूसरे रास्ते से आया करो। अब साहब वो दूसरे रास्ते से आने लगा, दूसरे रास्ते से कुछ दिन आया, फिर वही शिकायत, गुरुजी उसको इस रास्ते का भी पता हो गया है। अच्छा तुम तीसरे रास्ते से आओ, तीसरे रास्ते से आने लगा, पूरे रास्ते जब बंद हो गए, एक दिन गुरुजी कहा, गुरुजी अब वो नहीं मान रही और वो मतलब प्रपोज कर रही शादी के लिए, कदापि नहीं, एक बार यदि शादी के मोह जाल में फंस गए तो समझ

0: जिंदगी खत्म। वैराग्य का आनंद अलग है, कोई कहां उसमें आनंद है। थोड़े दिन बाद देखा कि वो लड़का कोर्ट मैरिज करके लड़की के साथ गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बहू ने भी चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने पूछा कि ये गुरुजी आपकी शिष्या कह लो, बहू कह लो, वो माने नहीं और आखिर हमें अब विवाह करना पड़ा। और वैसे भी गुरुजी आजकल शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि अगर दो जातियों का मिलन हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें गुरुजी हमने एक कौड़ी नहीं ली है, मतलब समझ लीजिए आप उस बच्ची के घर में, ये भी एक बहुत खुशी की बात है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन अब तुमने कर ली है तो चलो ठीक है, आनंद मनाओ, पर एक चीज अवश्य है। जी गुरुजी, अब तुम्हारा यहाँ पर आना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, तुम गृहस्थ के माया जाल में फंस जाओगे। नहीं गुरुजी, हम तो जैसे रोज आते थे वैसे आएंगे। मानो मेरी बात, मानो मुझे तो दुनिया का अनुभव है ना, मानो। अब साहब वो धीरे धीरे एक दो दिन टालने लगा, फिर 15 दिन में आने लगा, हफ्ते में आने लगा, करते करते वो महीने में आने लगा। करीब कुछ महीनों के बाद वो पहुंचा तो गुरुजी ने कहा, बहुत दिनों में आना हुआ, कहो सब ठीक तो है, कुशल तो है। गुरुजी आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, सब बढ़िया चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार से आनंद है। और तुम्हारी पत्नी कैसी है? गुरुजी वो भी आपकी कृपा से बहुत बढ़िया है। तुम्हें स्नेह करती है, प्रेम करती है? गुरुजी प्रेम? अरे प्रेम तो गुरुजी पल पल पे छलकती है, जान देती है हमारे ऊपर। अच्छा, इतना स्नेह करती? अरे गुरुजी इतना स्नेह कि हम कह नहीं सकते आपसे, कहो तो जान दे दे हमारे लिए। अच्छा एक काम करो। जी गुरुजी, उसकी परीक्षा ले लो। हाँ गुरुजी, परीक्षा ले लो, क्या करना क्या होगा? तुम 3 दिन आओ, मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा। योग भगाए रोग, योग से रोग भी दूर होते हैं, योग से परमात्मा की भी प्राप्ति होती है, योग से ज्ञान भी बढ़ता है, योग से परीक्षा भी होती है। अवश्य गुरुजी। 3 दिन वो आया साहब, गुरुजी ने योग सिखाया, और योग में ये सिखाया गुरुजी ने कि आप मरणासन्न हो जाएंगे, यानी मरे जैसे हो जाएंगे, मरेंगे नहीं और लोग समझेंगे मर गए। योग का कमाल है साहब ये, क्योंकि ऋषि मुनि हमारे जो तपस्वी होते थे वो कई कई 6-6 महीने के लिए चले जाते तपस्या में, लोग सोचते थे समाधि ले ली लेकिन फिर भी जिंदा। ये बात तो गुरुजी ने उसको सिखाया। अब कहा गुरुजी आदेश क्या है? गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम घर जाओ, पत्नी से कहना क्या बनाया, जो खाना बनाया वो नहीं खाना, दूसरा कुछ बनवाना, और तब तक जब तक वो बनाए तुम लेट जाना, हम आएंगे और फिर रामलीला चालू। ठीक है गुरुजी। अब साहब वो घर गया और पूछा, हाँ क्या बना आज?
1: आज मतलब हमने सोचा कि दलिया बनाए।
0: अरे तुम यार दरिया बनाया तुमने। दरिया अरिया नहीं था, मतलब एक काम करो, अच्छी चीज बनाओ, सतुआ घोर। अरे सतुआ नहीं घोर यार तुम, सतुआ दरिया तुम,
1: तो आप बताओ क्या परमल की सब्जी?
0: अरे वो तो मरीजों को खिलाते परमल की सब्जी।
1: वहाँ पर बताओ क्या बना।
0: अरे यार तुम एक काम करो, तुम और कुछ बढ़िया सा आइटम बनाओ ना तुम।
1: एक काम करो आप, साबुदाने खिचड़ी।
0: अरे यार तुम एक काम करो, सुनो मेरी बात।
1: हाँ आप कहो तो, आप तो कहो तो क्या खाएंगे हम, वो ही बना दे, 56 भोग बना दे, कहो तो आप।
0: 56 भोग रहन दो, तुम पूड़ी और खीर बनाओ और आज हम खीर पूड़ी खाएं।
1: दूध तो है,
0: तुम बाजार से मंगवा लो दूध, मेवा मंगवा लो, बढ़िया खीर बनाओ शानदार, आज हमारा बहुत दिल खुश है। अगर आज तुमने खुश कर दिया तो समझ लो तुम जिंदगी भर खुश।
1: कैसी बात कर रहे हैं आप, अब भी बनाते हैं खीर। फौरन दूध दूध उसने अरेंज किया और खीर बनाई, पूड़ी बनाई, खीर बन रही थी, पूड़ी बन रही थी। यहाँ पर ये गांव में मकान था इनका, पर्ची थी, पर्ची में खंभा लगा था और खंभे में पैर फंसा के ये समाधिस्ट हो गए, समाधि में लीन हो गए। वहाँ खीर बनाने में इनकी पत्नी लगी और जैसे ही खीर बनी उसने आवाज लगाई, अरे क्यों भाई चलो आओ खीर बन गई। कोई आवाज नहीं। अरे हमने कहा खीर बन गई, आइए प्लीज जल्दी आइए खीर बन गई। कोई आवाज नहीं। 3-4 आवाजें दी, जब कोई आवाज नहीं, उसने कहा कहीं निकल तो नहीं गए टहलने, आए देखें। देखा उसने तो ये अपने मरणासन्न पड़े, उसको उठाया, अरे उठिए उठिए। काय को उठे, वो तो समाधिस्ट थे। तब उनकी नब्ज देखी और देखा कि ये तो नहीं रहे, अब क्या करें। उसने विचार किया, महिलाएं बड़ी चतुर होती, उसने विचार किया कि देखो ऐसा है, अगर अभी हम रोते तो सारे गांव मोहल्ले के लोग आ जाएंगे। और जो बनी बनाई खीर है पंडित उसका दुरुपयोग करेंगे। तो इसके पहले कि पंडित इस खीर का दुरुपयोग करें, अपन इसका सदुपयोग कर क्यों ना कर लें। फौरन वो गई पंखे में खीर ठंडी करी और बिल्कुल सपाटे से उसने पूरी खीर पोंछ के खाई और गंजिया मांझ के धर दी उसने बिल्कुल, और फिर वहां पर आई और आने के बाद उसने पूरी रामलीला शुरू। मेरे को छोड़ के कहां चले गए, मैं इनको कितना प्यार करती थी, कहां चले गए मेरे स्वामी, कहां चले गए। अब ये आवाज साहब सुनी तो सासू माँ ने सुनी और वो चली आई। कहा होगा बेटा, काय के लाने रो रही, कहा होगा वो, ये नहीं रहे भगवान के पास चले गए। माँ ने देखा बेटा जो है उसकी नब्ज नहीं चल रही। अरे बेटा कहाँ चले गए, अरे राम कहाँ चले गए, पचपन की हम हो गए, भगवान हमें उठा ले तो इन्हें कहा उठा, अरे राम। इतने में दद्दा ने सुना, दद्दा भी आए, अरे कहाँ हो गो, अरे लड़का नहीं रहो। दद्दा भी बोले अरे 68 के हम हो गए, रिटायरमेंट हो गए, पेंशन नहीं तो खा रहे, अरे राम परमात्मा हमें उठा ले तो एक लड़का काय को उठा लो, अरे भगवान। गली मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए और तभी गुरुजी पीछे से आए। जैसे गुरुजी आए रोना पिटना मचा हुआ, गुरुजी को देखकर लोगों की ढढ़ास बंधी, शांत हुए। गुरुजी से गुरुजी ने आकर वहां पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। सभी ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। गुरुजी ने कहा कि अवश्य कुछ अच्छा होगा, मैं आ गया हूँ। तो सबने कहा गुरुजी ऐसा कुछ करो कि जी हमारा जिंदा हो जाए। अब तीनों लोग ने कहा, बहू ने क्या कहा, सास जी ने क्या कहा और बब्बा जी ने क्या कहा, अलग अलग लोगों के अलग अलग बातें। सुनिए साहब, बहू ने पहले क्या कहा, गुरु जी कैसे करो, हाँ कुछ भी करो गुरु जी, हमारे प्राण ले लो, लेकिन इनको जिंदा कर दो गुरु जी। मेरे को बहुत चाहती थी मेरे प्राण ले ले गुरु जी, लेकिन इनको जिंदा कर दो। अवश्य अवश्य मैं यत्न करूंगा। दादी अम्मा ने कहा, मतलब बहू की सास ने, अरे गुरु जी, अरे राम हमारे तो दिन कहे भाई, लड़का जलो गो जीवे को का फायदा गुरु जी, अरे राम, अरे अरे गुरु जी, गुरु जी हमारे ले लो, अरे राम परमात्मा लगे तो हमारे प्राण ले लो, लेकिन लड़का को अरे लड़का को चिंता कर दो गुरु जी, अरे अम्मा की आत्मा तुम्हें कहाँ मालूम, अरे राम अरे गुरु जी हमें लगे तो ले लो, लड़का जिंदा कर दो गुरु जी। बब्बा ने बोला, अरे गुरु जी दुकजिया को रहन दो, बहू को भी रहन दो, तुम तो हमारे प्राण ले लो, 68 के हो गए, अब तो चला चली की बेरा है, वैसे भी हमारा 2-3 दोस्त चले गए, हमारा नाम बेटिंग में, हमें ले लो गुरु जी, अरे राम अरे। ये चर्चा चल रही थी। गुरु जी ने कहा आप लोग ना रोएं, अवश्य बच्चे की जान आ जाएगी, जीवित हो जाएगा। एक काम करें, पवित्र गंगा जल आप बुलवाएं, मैं अभी कुछ प्रयोग करता हूं। गंगा जल साहब बुलवाया गया, मंगवाया गया गंगा जल, गंगा जल रखा। गुरुजी ने गंगा जल अपने कमंडल में लिया और कुछ मंत्रोच्चारण किया, और मंत्रोच्चारण करने के पश्चात में उन्होंने उस जल को पीने के लिए पीने योग्य बनाया। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्यात्या च गायंडकी पूर्ण पूर्ण जलैः समुद्र सहिताः कुर्यात् सदा।

माँ गंगे, इस बच्चे का कल्याण करो। अवतरित हो माँ, आश्रय दो माँ, प्राण दो माँ। अब साहब उनने ये पढ़ा और पढ़ने के तत्पश्चात लोगों को बड़ी आशा जागी कि अब शायद बच्चा जीवित हो जाएगा। अब गुरु जी ने कहा, देखिए ऐसा है, ये पवित्र गंगा जल जो मंत्रोच्चारित हो चुका है, इसे जो पिएगा उसके प्राण निकल जाएंगे, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा सबसे पहले कि देखिए ऐसा है, सबसे ज्यादा जो प्रेम करता है वो इसको पहले पिए। तो बेटा बहू, तुम तो जान से ज्यादा चाहती थी तुम पी लो। तो बहू ने कहा, नहीं हो कैसे, पहले पहले तो सबसे पहले पप्पा जी का नाम मारे। हमारा नाम तो वेटिंग में है। बब्बा जी से कहा कि आप पी लो। बब्बा जी कहा, अरे बेटा हम तो जरूर पी लेते, हमें तो जाने हैं आज नहीं कल, लेकिन अगर हमने पी लो तो जेड कर गया को कान देखे। अरे वो तो बाहर कर दे रोटी पानी कौन दे है। अरे राम हम नहीं पी रहे बेटा, गुरु जी हम नहीं पी रहे, हमें माफ करे परमेश्वरी, हम नहीं पी रहे गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि सेकंड अपॉर्चुनिटी दादी जी को दे, दादी से कहा कि

0: आप पी लो, माता जी आप ग्रहण करें जल। अभी आप कह रहे थे कि हमारी जान ईश्वर ले ले लेकिन बच्चा जीवित हो जाए। अरे अरे राम, आ, आ, अरे आ, अरे हम तो पी लेते गुरु जी, लेकिन का बताए अगर जैसे हमने जल पी लो फिर डोकरा को काहू नहीं तो आपके इनके लिए बब्बा जी के लिए तो बहू है। अरे बहुओं की तो का बात है गुरु जी, हम चल बसे तो वे न्यारी हो जाए, डुकरा को कौन देखे। हम नहीं पी रहे गुरु जी, हमें नहीं पीने। गुरु जी ने तीसरा ऑप्शन उसकी पत्नी से कहा कि अब दोनों जन नहीं पी रहे इसलिए आप पी लीजिए। तो उसने क्या कहा, गुरु जी मैं नहीं पी सकती। क्यों, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं प्राण दे सकती हूँ, पी सकती हूँ, सब कर सकती हूँ उनके लिए। गुरु जी मैं जरूर पी लेती, लेकिन मेरी और मेरी सहेली की एक शर्त लगी थी कि देखो जो भी ये जो जाता है लड़का ना, जो कि ब्रह्मचारी है, उससे जो भी मतलब अपने तरफ मामला पूरा सेट हो जाएगा ना, मैं वो जीत जाऊंगी, तो हमने 10,000 की शर्त दी थी गुरु जी। लेकिन ना मेरी तो शादी हो गई, अगर मैंने गुरु जी पी लिया ना तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन गुरु जी इनको इनकी हमारे जैसी कई हीरोइन मिल जाएंगी। और वैसे भी गुरु जी मैं भी इतनी खराब नहीं दिखती हूँ, मेरी उम्र ही क्या हुई है। अगर मान लीजिए ये मर गए तो मरे रहने दीजिए, मुझे इनकी जैसे कई हीरो मिल जाएंगे। इतनी बात गुरु जी ने सुनी तो फौरन पीछे से एक आवाज आई,
1: कहा गुरु जी।
0: हाँ पुत्र बोलो।
1: तो भाई काले पियो।
0: गुरु जी ने कहा, हाँ पुत्र मैं अवश्य पी लूंगा, लेकिन यहां नहीं, मैं भी थोड़ी देर से पीऊंगा। गुरु जी ने गटगटा के पानी पिया।
1: कहा गुरु जी जिंदा नहीं हो रहा भैया, अब तुम तो जाओ बा। गुरु जी और कितनी देर जियो यार, जल्दी करो।
0: अब साहब गुरु जी ने कहा, नहीं इसका विधान है, इसको ले जाना पड़ेगा और स्मशान भूमि में एक और संस्कार करेंगे, तब मेरे प्राण निकलेंगे इसके आएंगे। ये जो खंबे में लात इसकी फंसी है, टांग फंसी है, इसको निकालिए ले चले। अब वो साहब टांग इतनी जकड़ गई थी कि खंबे से निकल नहीं रही थी। तो दो ऑप्शन थे, पहला कि खंबा काट दूं और नहीं तो दूसरा। तो साहब जब उनने कहा कि दूसरा ऑप्शन, तो उसने पत्नी से कहा उसकी, तो कि अब क्या करें, खंबा काट दें कि। तो उसने कहा, गुरुजी अभी 3,500 रुपये दे के छपवाया है, अगर आपने खंबा काटा तो ये छत घर घर आ जाएगी, पूरी पूरी गिर जाएगी मचान। आप एक काम करो, अब तो जी चले ही गए हैं, अब आप तो
2: फौरन साहब उठे और दो तीन अपने हाथ दिए और खूब लट्ठ खूब पिटाई।
1: क्या लगा है, तुम तो बोले थे बहुत चाहते जी हो जाती, नहीं तो ऐसे क्या था? अच्छा तुम तुम्हारी तो
0: बहुत उनने धुनाई की और गुरुजी ने एक ही बात कही,

0: हंसना मना है,
1: हंसना मना है,
0: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
0: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
1: हंसना मना है।
0: भाई वाह, लतीफे सुनाने में मकरंद बड़नेरकर का जवाब नहीं, यकीन नहीं आता ना, तो चले सुने इनको।
2: एक बार क्या हुआ, एक चौराहे में एक आदमी खड़ा हो गया, दूसरे आदमी को पीट रहा था। बहुत देर हो गई, घंटा भर हो गया पीटते पीटते, कुछ लोगों से रहा नहीं गया, तो उन्होंने बोला, भाई क्या बात है यार, क्यों मार रहे हो इसे, जब से देख रहा हूँ पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो। अरे समझ में नहीं आता यार, क्या आदमी है यार, इसने मेरे को 2 साल पहले गेंडा कहा था, 2 साल पहले गेंडा कहा था, और आज आप इसे पीट रहे हो। क्या बताऊं यार, आज ही चिड़ियाघर में जाके गेंडा देख के आया हूं।

0: ऐसी एक बड़ी प्यारी सी बात। एक पहलवान विज्ञापन के दफ्तर में पहुंचा और जाके सीधे मुख्य संवाददाता को उसने मारना चालू किया। लोग परेशान हो गए, बोले क्या बात हो गई, क्यों भाई क्या बात है पहलवान जी, क्यों मार रहे हो? अरे इस आदमी ने मेरा सारा कचरा कर दिया, मेरी अच्छी खासी अगरबत्ती की फैक्ट्री थी, मैं यहाँ विज्ञापन देने आया पेपर में, इसने पूरा विज्ञापन उलट दिया। बोले क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया, आप क्या पूछ रहे हैं? देखिए मैंने विज्ञापन दिया था पहलवान छाप अगरबत्ती, और उसने पेपर में छाप दिया अगरबत्ती छाप पहलवान। एक छोटा सा बच्चा अपने घर के सामने साइकिल चला रहा था, शायद पहली बार साइकिल चला रहा था। चलाते चलाते अचानक क्या किया, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसने एक हाथ छोड़ दिया, और हाथ छोड़ के अपने दोस्त को बोलता है, अरे चिंटू चिंटू देख देख मेरा हाथ गायब, देख देख मेरा हाथ गायब। थोड़े देर बाद उसने क्या किया, दूसरा हाथ भी छोड़ा और बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों हाथ गायब, मेरे दोनों हाथ गायब। उसने फिर क्या किया, पैर भी छोड़ दिए, फिर बोलता है, अरे चिंटू देख देख मेरे दोनों पैर भी गायब, मेरे दोनों पैर भी गायब। धड़ाम से जाके आगे गिरा, खिसिया के बोला, मेरे ना दोनों दांत भी गायब, मेरे दांत भी गायब।
1: हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है बैजनाथ, उनके घर एक दिन में पहुंचा। बैजनाथ ने बोला, आओ रजनीकांत जी आओ बैठो बैठो। तो साहब हम बैठे, चाय आई कॉफी आई, बड़ा आनंद आ रहा था, यहाँ वहाँ की चर्चाएं हुई। अचानक हमारे मित्र बैजनाथ का लड़का, बड़ा प्यारा सा बच्चा, अपने पिता के पास यानी हमारे मित्र बैजनाथ के पास जाके बोलता है, पप्पा पप्पा हम बाहर जाएं पप्पा। तो उनके पिताजी ने बोला, क्यों भाई क्यों बाहर जाएं? पप्पा पप्पा वहाँ बाहर बंदर आया, हमको उसको देखना है। तो बैजनाथ बोलते हैं, बेटा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी अंकल जी घर में आए हैं, वो बैठे हैं और तू बंदर देखने बाहर जा रहा है। मैं चला जा रहा था, अचानक रास्ते में क्या देखता हूँ, चार पांच बच्चे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से एक जगह पर इकट्ठा हैं। मैं पहुंचा, मैंने देखा, हमने क्यों बेटा क्या हो रहा है? 10 का नोट पड़ा हुआ था जमीन में, चारों पांचों बच्चे बोल रहे थे आपस में कि जो सबसे अच्छा वाला बढ़िया वाला झूठ बोलेगा ना, ये 10 का नोट अंकल जी उसको मिल जाएगा, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। तो मेरे को लगा, हमने कहा देखो जरा जरा से छोटे छोटे बच्चे ये आपस में ये विचार कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसको 10 रुपए का नोट दिया जाएगा, उसको मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बच्चों को समझाया, देखो बेटा झूठ बोलना बहुत खराब बात है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो एक लड़का बोलता, अंकल जी जीत गए, अंकल जी जीत गए, 10 रुपए अंकल जी को मिल गए। एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर थे, दिमाग के डॉक्टर, उनके पास सुबह सुबह एक मरीज पहुंचा था, उसको कुछ परेशानी थी, क्या परेशानी वो हम सुनते हैं। ये मरीज आया,
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, आजकल वो मतलब कहने का डॉक्टर साहब,
1: क्या मतलब कहने का, अच्छे से बताइए क्या मतलब, मतलब क्या है, क्या हो गया आपको
2: डॉक्टर साहब? मेरा मतलब कि मतलब ऐसा कि मतलब डॉक्टर साहब,
1: ओहो हमारे समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या मतलब इस तरीके से बताइए, आपको क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है आपको?
2: डॉक्टर साहब बात यह है कि आजकल मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो चली है, मैं जो भी कहा किया करता हूँ वो सब बिल्कुल तुरंत ही भूल जाया करता हूँ, बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब।
1: ओहो यानी याददाश्त कमजोर हो गई है?
2: हाँ डॉक्टर साहब,
1: जो कहते हैं करते हैं भूल जाते हैं,
2: भूल जाते डॉक्टर साहब, बिल्कुल भूल जाते हैं, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, बहुत परेशान।
1: एक मिनट एक बात बताइए जी, ये बीमारी आपको कब से है
2: डॉक्टर साहब? कौन सी बीमारी?
1: एक पागल खाने की कहानी सुना रहा हूँ। एक नए डॉक्टर पूरे पागल खाने का मुआयना कर रहे थे, पुराने डॉक्टर साहब उनको सब समझा रहे थे कि कौन पागल कैसा है, किसकी तबीयत कैसी है, कौन क्या है वगैरह वगैरह। ये नए डॉक्टर हैं और ये पुराने डॉक्टर, सुनते हैं आगे क्या है।
2: डॉक्टर शर्मा ये पागल गंगाराम है, ये एक लड़की से प्यार करता था,
1: ओहो
2: बेचारा,
1: ओहो
2: शादी करना चाहता था।
1: कौन कौन कौन शादी करना चाहता था?
2: ये गंगाराम नाम का पागल,
1: ये जो पागल है इसका नाम क्या बताया आपने?
2: गंगाराम।
1: अच्छा ये क्या करना चाहता था?
2: ये डॉक्टर साहब एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
2: मगर लड़की ने धोखा दे दिया और पागल हो गया।
1: ओहो।

0: याने गंगाराम जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने उसको धोखा दे दिया और इसको कुछ ऐसा चोट पहुंची दिमाग में तो ये पागल हो गया।
1: पागल हो गया।
0: अच्छा चलो आगे चलते हैं।
1: बेचारा
0: ये सामने जो ये जो खड़ा हुआ ये कौन है?
1: वो वाला?
0: हाँ हाँ
1: डॉक्टर साहब वो तो पागल लटोरे लाल है।
0: अच्छा इसका नाम क्या रखा आपने? नहीं इसका नाम क्या है? लटोरे लाल।
1: ये लटोरे लाल।
0: अच्छा अच्छा इनको क्या तकलीफ है? कैसे पागल हो गई है?
1: इसने उसी लड़की से शादी की है जिस लड़की से गंगाराम प्यार करता था। एक फिल्म की शूटिंग की तरफ लिए चल रहा हूँ। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हीरो के डायलॉग रहते हैं तो हीरो समय पर स्टूडियो नहीं आता है जिसके कारण डायरेक्टर साहब को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अचानक एक ऐसे आदमी को पकड़ लिया जाता है जो जल्दबाजी में जिसको पकड़ कर लाया जाता है वो आदमी अपना ताबीज बेचकर पेट पालने वाला एक मदारी और जमुरी का खेल दिखाने वाला शख्स होता है। उससे वो डायलॉग बता दिया जाता है। वो डायलॉग कुछ इस तरह था कि लैला लैला तेरी लंबी लंबी जुल्फों में हो जाने को जी चाहता है। लैला तेरे मोती जैसे दांत इनके सामने सूरज भी मान पड़ जाता है। लैला तेरी लंबी लंबी जुल्फों में हो जाने को जी चाहता है, डूब जाने को जी चाहता है। लेकिन जैसे ही मदारी को उस डायलॉग को बोलने के लिए शॉट पर लाया जाता है मदारी पहले जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया वैसा डायलॉग बोलने का प्रयास करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से में हंसना मना है इस धारावाहिक की 6वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। भारत कल से केरल के कोची में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे ओणम उत्सव के दौरान भी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए 8,815 श्रद्धालुओं का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी एवं अभिभावक राज्य शिक्षा केंद्र के वेब पोर्टल www.rskmp.in/results.aspx पर परिणाम देख सकेंगे। शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात 10 बजे नॉटिंघम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नमस्कार साथियों, कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। कैसी हैं आप? बारिश की बूंदों ने कर दिया ना मन तरोताजा। जरूरी भी है सखियों, मन अच्छा होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। और इन दोनों के साथ ही सखियों, खुद पर भरोसा और अपने दम पर आगे बढ़ने की चाह का होना भी जरूरी है। ये वो गुण है सखियों, जिन पर सफलता की नींव रखी जाती है। गौर फरमाइएगा, खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। खुद पर हो भरोसा तो हर राह आसान हो जाती है। आत्मनिर्भरता की धूप में हर मुश्किल पिघल जाती है। सखियों, आत्मनिर्भरता का भाव जीवन में सबसे बड़ा संबल है। जी हाँ, आत्मनिर्भर नारी सशक्त समाज का अभिप्राय है महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होना। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो वे केवल अपने परिवार को ही नहीं सखियों, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के

समग्र विकास की मुख्य धुरी बनती हैं। क्या सोच रही है? यही ना कि जीवन में आत्मनिर्भर होना यानी सशक्त होना बहुत जरूरी है। सही सोच रही है। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योजना की। जी हाँ, हमारी मध्य प्रदेश सरकार

सुरक्षित मातृत्व, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए कुल 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सखियों, इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और उचित पोषण को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता की बात करें तो सखियों, पहली और दूसरी संतान के समय 16,000 रुपए की राशि 2 किश्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सामान्य प्रसूति के समय 4,000 रुपए और संस्थागत प्रसव के बाद 12,000 रुपए। पात्रता मानदंड की बात करें तो सखियों, महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए। महिला या उसके पति का असंगठित कर्मकार मंडल या भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक होना अनिवार्य है। सखियों, महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो आधार से लिंक हो, गर्भावस्था का मेडिकल प्रमाण पत्र, डॉक्टर की पर्ची और जन्म के बाद शिशु का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके साथ ही सखियों, आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या ई उपार्जन एमपी लेबर डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से कर सकती हैं। और अब सुन लेते हैं प्यारा प्यारा भीगा भीगा सा एक गीत।

0: मस्त नजारे चलते चलाते तू भी सुन जा
1: सुन जा आ ठंडी हवा
0: आ हा थम जा।
2: गीत हमने सुन लिया सखियों, अब भरते हैं हौसलों की उड़ान।
3: उड़ान खुशियों की, उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, मेरी उड़ान।
4: सखियों, आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, परिवार नियोजन और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुँचाती है, विशेष रूप से स्वयंसेवी के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, एक ऐसे ही जिम्मेदार कर्तव्यनिष्ठ आशा कार्यकर्ता इंदु बाला चौहान हमारे साथ हैं श्रृंखला मेरी उड़ान में। आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार इंदु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: जी धन्यवाद, नमस्कार।
4: इंदु जी, सर्वप्रथम तो आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं, कितने घरों को आप कवर करती हैं?
5: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य कड़ी है। आशा कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारियां हैं समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीकाकरण और परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना, गर्भवती महिलाओं का पंजीयन व संस्थागत प्रसव कराना, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना और टीकाकरण में भाग लेना, और समुदाय में ORS के पैकेट वगैरह बांटना, आयरन की गोलियां देना, कंडोम बांटना, ये सब जो है आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य जिम्मेदारियां हैं।
4: बहुत ही अच्छी आपने हमें जानकारी दी इंदु जी, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण में आप कैसे मदद करती हैं?
5: हम आशा कार्यकर्ताएं गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। हम लोग घर घर जाकर सर्वेक्षण करती हैं और गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनका पंजीयन करवाती हैं, और जो बच्चे हैं जिनको रूटीन टीकाकरण लगना है, जैसे जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को जो टीकाकरण होते हैं, तो इन लोगों का जो है टीकाकरण केंद्र तक लेके जाते हैं हम लोग अपने समुदाय में से, ताकि बच्चों को जो है जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। और गर्भवती महिलाओं को भी टिटनेस का टीका लगना, उनका पंजीयन ऑनलाइन आजकल एंट्री हो गई है मैडम, तो वो सब कुछ हम लोग का जो है जिम्मेदारियां है सब।
4: इंदु जी, हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और अब बात करते हैं समस्याओं की। फील्ड में काम करते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप बताएं प्लीज।
5: जी हाँ, वैसे तो जो भी काम करते हैं तो शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, वैसे ही हम आशा कार्यकर्ताओं को भी बहुत सारी समस्याएं बनी रहती है। जैसे सरकार अगर कोई स्वास्थ्य योजना चलाती है तो लोगों को इसके बारे में समझाना, तो ज्यादा लोग शिक्षित नहीं रहते हैं तो वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो हमको मतलब लोगों को समझाना पड़ता है क्या लाभ है इन सब चीजों के और ये योजना क्यों चला रही है सरकार, तो आपको क्या लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम आशा कार्यकर्ता बहुत सारी ऐसी है जिनको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जैसे मैं हूँ तो मुझे तो परिवार की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला है, मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी ड्यूटी के लिए, लेकिन बहुत सारी आशा बहनें हमारी जिनको परिवार में जो है आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये सब समस्याएं जो है बनी रहती हम लोगों के, लेकिन फिर भी हम लोग को मेन उद्देश्य हमारा क्या है, समाज सेवा है आशा कार्यकर्ता के रूप में, तो हमें बस खुशी मिलती है।
4: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत ही सहज तरीके से अपने मन की बात रखी, और वास्तव में ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप समाज सेवा कर रही हैं। यदि हमारी कोई सखी जो आशा कार्यकर्ता बनना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको किन औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा?
5: वैसे आशा कार्यकर्ता जब मैं बनी थी तो 12th पास से ही मैंने जो है फॉर्म भरा था, अपने जोन है स्वास्थ्य विभाग का जोन, जैसे अपने इंदौर जिला में 4 मुख्य जोन है, तो जो वार्ड वाइज जो जोन है अपना नंदा नगर जोन लगता हम लोग का, तो वहां जाके मैंने फॉर्म भरा था, और फिर मेरा लगभग 6 महीने बाद में ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ गया था। आपने जैसे अभी पूछा कि अगर कोई बहन अगर हमारी आशा कार्यकर्ता बनना चाहती है, तो उसके लिए जो है मैंने तो 12th पास से ही मैंने फॉर्म भरा था और मेरी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन अब जो है उसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है हमारी कोई सी भी बहन अगर आशा कार्यकर्ता बनना चाहे तो, और उसका मृदुभाषी होना बहुत जरूरी है। अगर फील्ड में जाएंगे अपनी बात रखना आना चाहिए, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई बात नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए अपना व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए कि सरकारी योजनाओं को हम जो है सही तरीके से लोगों को बता सकें और लोग उसका लाभ उठा सकें, अपनी बात को उनके मन तक पहुंचा सकें, लोगों को जो है जागरूक कर सकें, ये जज्बा होना चाहिए, तो वो जो है आशा कार्यकर्ता की ड्यूटी कर सकती है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता जरूरी नहीं है कि पेमेंट आया तो ही या पेमेंट के लिए ही नौकरी करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है हम लोग केस में, तो बस एक सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, सबसे मेन पॉइंट है। और अगर किसी की मदद हो रही है हम आशा कार्यकर्ताओं की वजह से, तो दिल में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने ही अनुभव किया हकीकत में, बहुत बार बहुत खुशी मिलती है हकीकत में।
4: क्या बात है, तो आपके चेहरे से हम देख रहे हैं खुशी झलक।
5: हाँ जी जी, धन्यवाद।
4: इंदु जी, ये बताइए कि सही समय पर सहयोग प्रोत्साहन राशि आपको मिलती है, आप संतुष्ट हैं?
5: हाँ जी मैडम, प्रोत्साहन राशि तो मिलती है समय पर, थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन आ जाता है पेमेंट, हम लोग खुश हैं।
4: क्या बात है। अब ये बताइए इंदु जी कि एचपीवीटी का प्रदेश की हमारी 14 वर्षीय बेटियों को लगाने का आग्रह किया जा रहा है, तो इस विषय में भी आप हमारी सखियों को जानकारी दें।
5: हाँ जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अभी जो है सरकार ने एचपीवी का टीका निकाला है, जो कि 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को लगना है। यह टीका सर्वाइकल कैंसर जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहते हैं, तो उससे जो है बचाव के लिए ये टीका है। तो मैं एक आशा कार्यकर्ता के रूप में सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि वे अपने घरों में जो भी 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाएं हैं, उनको ये टीका अवश्य लगवाएं। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल निःशुल्क है टीका, और बालिका का जो है आधार कार्ड साथ में लेके जाएं और इस सरकारी सुविधा का लाभ उठाएं।
4: क्या बात है इंदु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक और सवाल हम आपसे करते हैं कि एक स्वस्थ भारत के निर्माण में आशा कार्यकर्ता की क्या भूमिका है?
5: एक आशा कार्यकर्ता समुदाय में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, जो समर्पण, निस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती है। और आशा कार्यकर्ता पहले भी लोग जो है दूर दराज क्षेत्रों में जाकर घर घर जाकर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करती है, जो सामाजिक सेवा और जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने का बहुत बड़ा उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग जो आशा कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है, और इस तरह से हम लोग एक स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देती हैं।
4: इंदु जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, हमारी सखियों को निश्चित रूप से हमारी बातचीत से लाभ पहुंचा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी, आप अपनी फरमाइश का अगर गीत बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
5: हाँ जी, बालिकाओं की बात हो रही है तो मैं चाहूंगी रोजा फिल्म से गाना है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, सुना दे दीजिए।

देखिए रूप लावण्य में बातें हो रही हैं खुशबू की, जी हाँ इत्र की, परफ्यूम की, जो आपके रूप लावण्य को अनुपम बनाता है। सखियों इत्र या परफ्यूम का सही इस्तेमाल हमारे व्यक्तित्व और सुंदरता में चार चांद लगा देता है, साथ ही ये हमारे अंदर आत्मविश्वास भी भर देता है और दूसरों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। सखियों सुंदरता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए इत्र का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इत्र हमेशा शरीर के उन हिस्सों पर लगाना चाहिए जहाँ रक्त का प्रवाह त्वचा के करीब होता है और थोड़ी गर्माहट रहती है। गर्माहट से सखियों खुशबू प्राकृतिक तरीके से फैलती है। कलाई, गर्दन और कॉलर बोन के साथ कानों के पीछे इत्र जरूर लगाएं। इत्र या परफ्यूम लगाने के बाद उसे कभी भी हाथों से रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सखियों खुशबू के प्राकृतिक तत्व टूट जाते हैं और उसकी महक बदल जाती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें सखियों कि इत्र त्वचा पर धीरे धीरे स्प्रे करें या थपथपाकर छोड़ दें। अपनी सुंदरता और खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इत्र लगाने से पहले त्वचा पर कोई अनसेंटेड बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन जरूर लगाएं, क्योंकि इससे इत्र या जो परफ्यूम है उसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहेगी। सखियों इत्र और परफ्यूम का चयन हमेशा मौसम के अनुसार करें। यदि आप ऐसा करेंगी तो महफिल में आपकी तारीफ में वाह वाह होगी। और चलिए अब गीत सुनकर भी आप वाह वाह कह उठेंगी।

बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो झटपट चीज कॉर्न चाट तैयार कर सकते हैं। ये स्वाद में लाजवाब, पौष्टिक और बनाने में आसान होती है। तो बस झटपट सामग्री नोट कर लें। स्वीट कॉर्न 1 कप उबले हुए, 1 छोटा बारीक कटा प्याज, 1 टमाटर कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और मक्खन सक्यो 1 बड़ा चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, मसाले स्वादानुसार, नमक आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, चीज कद्दूकस किया हुआ स्वादानुसार और बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। और बनाने की विधि तो बहुत आसान है सखियो। जी हाँ, एक पैन में मक्खन गर्म करें, इसमें उबले हुए कॉर्न डालें और 2-3 मिनट तक भुने। अब इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो भी हमने काट कर रखा था मिला दें और इसमें अब लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 1-2 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें। अब ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दें और इसे एक सुंदर बाउल में निकालें और ऊपर से कद्दूकस की हुई चीज और हरे धनिया से गार्निश करके गर्मा गर्म परोसे और सबका दिल जीत लें। और चलिए अब हम आपका दिल जीतते हैं और सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

गीत हमने सुन लिया सखियों, और अब कर लेते हैं काम की कुछ बातें। बारिश के मौसम में बिजली के उपकरणों और तारों से सुरक्षित रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी हां सखियों, बिजली चमकने पर या भारी बारिश के दौरान टीवी, कंप्यूटर और फ्रिज जैसे कीमती उपकरणों को मेन प्लग से निकाल दें। सीधे मेन लाइन से जुड़े कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी न करें। गीले हाथों या नमी वाले हाथों से कभी भी स्विच, सॉकेट या किसी भी उपकरण को न छुएं। जमीन पर या पानी की संभावना वाली जगहों पर एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग बिल्कुल न करें। अपने घर की अर्थिंग और MCB की जांच किसी प्रमाणित इलेक्ट्रीशियन से जरूर करवाएं, ताकि करंट का खतरा न रहे। साथ ही सखियों, भारी बिजली के झटकों और वोल्टेज स्पाइक से उपकरणों को बचाने के लिए घर में सर्ज प्रोटेक्टर जरूर लगवाएं। तो सखियों, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो बारिश के मौसम में आप सुरक्षित रहेंगी। अरे, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलिए आपको बता दें, कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब दुर्गेश नंदनी को दें अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें आज आप सुनेंगे मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री और साथियों के स्वर में ये निमाणी लोक रचना।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान है। इसमें पहले सुनिए रत्ना चक्रवर्ती के स्वर में भजन।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: ये गीत था फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज़ थी सुरेश वाडकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: पीपल People...

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग अदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को अब तक 25 से अधिक देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाज चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को नई गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई के इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने पर खुशी व्यक्त की।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा प्रमुख जनरल NS राजा सुब्रमण्य सहित सेना और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि उनका शौर्य सदैव राष्ट्र सेवा की ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है, वे मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण करने और 70% से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का ही उपयोग करने की सलाह दी है। प्रदेश पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मऊगंज जिले के बिझोली गांव में एक किराए के मकान में चल रही अवैध सिंथेटिक ड्रग निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। विंध क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,28,00,000 रुपए मूल्य का मादक पदार्थ, रसायन उपकरण और वाहन जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के तार मुंबई, नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य शहरों तक जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अशोकनगर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच एक ट्रिप विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 जुलाई को दिल्ली से रवाना होकर 27 जुलाई को अशोकनगर पहुंचेगी, जबकि वापसी में 30 जुलाई को अशोकनगर से चलकर 31 जुलाई को दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कैंट, ग्वालियर और झांसी सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक करीब 7 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से केवल 1% कम है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के निदान वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ने से फंसे 2 पर्यटकों को प्रशासन ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। शिवपुरी में स्टेट बैंक RCT द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉलेशन का 13 दिवसीय निःशुल्क आवासीय ट्रेनिंग कैंप 9 जुलाई से शुरू होगा। नर्मदापुरम के इटारसी स्थित तवा नदी पुल की मरम्मत के चलते 16 जुलाई तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मैहर नेशनल हाईवे 30 पर डिगरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का 3रा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
2: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
3: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम

0: धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
2: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
3: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले तीन दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है हमारे इन साथियों की, भाटापारा छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा, बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, इन सभी साथियों ने सुना चाहा है फिल्म पेइंग गेस्ट का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार, आशा भोसले की, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है एसडी बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है, फिल्म है तेरे घर के सामने, और इस प्यारे से गीत को आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी ने, और गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है अजरी बर्मन का, और सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, अमलेश्वर महादेव घाट छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, और कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख मंसूरी, ये सभी साथी हैं, और ये साथी सुनना चाहते हैं तेरे घर के सामने, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

ये अगली पसंद जो भेजी है हमारे ये साथी हैं सिंहपुर बड़ा से, राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची नेमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जासमीन, प्रयागराज भट्ट, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं अनारी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर मुकेश की, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल केतन, और ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है असली नकली इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेंग बिरक, मीका बिरक। इन साथियों ने सुनना चाहा है तीन देवियाँ, इस फिल्म का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर किशोर कुमार की, गीतकार है मजरू, संगीत है SD बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत है जीने की राह इस फिल्म से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनू राज श्रीमाली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा।

अगला गीत है लिया है हमने फिल्म आराधना से, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार लता मंगेशकर की। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नी नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा सोनम बोड़खे और रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर ये गीत।

0: ये था कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष टूर्नामेंट में श्रीलंकाई टीम की भागीदारी पर खुशी व्यक्त की और सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन बत्रा कारगिल युद्ध में शत्रुओं पर काल की भांति टूट पड़े और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि जब तक खेतों में करीब 4 इंच यानी 1 बालिश्त की गहराई तक पर्याप्त नमी न हो जाए तब तक बुआई करना जोखिम भरा हो सकता है। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के 26 अन्य जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटे और केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आपको बता दें आज शाम की सभा में कौन कौन से जो कार्यक्रम हैं वो प्रसारित होंगे। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। शाम 5:33, 6:55, रात 8:15 और रात 10:00 सुनिए फिल्म संगीत। शाम 6:00 सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग रजनी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जगन्नाथ और साथियों द्वारा राग मधु कौंस में शहनाई वादन।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा होगा 7:21 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत खेती डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक से।

0: ये थी जानकारी हमारे शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। 3:02 में हैं हमारी ये सभा, यहीं संपन्न होती है, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।
1: चाहिए तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप बदल ले लेता है।

0: देते हैं कि
1: बिल्कुल
0: बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
1: या
0: झरनों के पास,
1: जी डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
0: लहर आती है,
1: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
0: वो रील मोबाइल से ही पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं, और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
1: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगहों से पता चला है।
0: लाइक
1: कमेंट, कमेंट,
0: आपने
1: लाइक,
0: रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया,
1: जी इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं। और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
0: वक्त कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
1: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
0: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं, और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं, हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
0: देख तो रहे हम भी
1: जी,
0: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसके फेर में नहीं पड़ते हैं
1: जी।
0: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले 250 कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं
1: जी। बिल्कुल
0: याद है
1: जैसे
0: आपको?
1: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर,
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
0: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी, लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो हो गई। ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो बस सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
1: जी,
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे
0: थे।
1: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते।
0: तो कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती
1: है बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं, कोई तो कहता है ना, हम कभी बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए, और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
0: जाता है,
1: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात

0: हो और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज। आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह, जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की, किनारा कैपिटल नाम से।
1: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट, लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ लोग कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और अब, जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ, दरअसल किस तरह से वो आगे बढ़ी।
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज़्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है। तो उन कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है। तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं।
1: जी, ये ऐसा नाम है ममता जी जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है।
0: जी।
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की हैं हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी, और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से MBA पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहाँ उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
1: जी, और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
1: जी,

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह

0: और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल हैं कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
2: जी।
1: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और याद आ जाता है। वह यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे। वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था, तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल। और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
1: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: प्रसिद्धि
1: और
0: है, जी।
1: कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज़ को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फ़ोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है
0: जी, तो
1: और
0: मालूम पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए, फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पर आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज़्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे। दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी
1: बात तो
0: खुद को
1: सही है।
0: समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नज़र जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने कार्यक्रम
0: श्रोताओं
1: से
0: तक
1: संबंधित
0: पहुंचा
1: वो
0: देंगे।
1: पहुँचाएँ हम।
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो
1: जी
0: उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। फिर
1: जी
0: और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोस या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं,
1: जी
0: वहाँ लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से,
1: जी
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं, पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी,
1: जी
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था।
1: बिल्कुल
0: कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर
0: कुछ
1: रहे हैं।
0: लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं,
1: हाँ ये बात
0: कि
1: भी होती है।
0: फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है।
1: जी
0: तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो
1: जी
0: किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से
1: जी
0: जान
1: जान
0: लेते हैं
1: लेते हैं
0: कि हाँ ये
1: जी
0: किताब चर्चित है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें, और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे, कि ये कहते हैं वायरल होने का जुनून, जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते, तब खुद की गरिमा को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है।
0: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, तो जो फ़ायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है, और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं। अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं और कुछ लोग
1: और
0: अपना डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो जी, ये दिखाते हैं कि हमें देखो हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे
0: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
1: सोशल मीडिया पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल
0: करना। और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज़ अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना।
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव ज़रूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता
0: है, कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है,
1: जी।
0: लेकिन वहाँ भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहाँ पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते
1: वो
0: हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज़ है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती हैं कि हम तो ठग गए,
1: हाँ
0: जबकि
1: जी,
0: ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहां पर मोलभाव नहीं करना चाहिए वहां भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, 5 रुपए कम दे देना।

0: तो सब्जी वालों से आप मोल भाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोल भाव नहीं करना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है ये
0: बिल्कुल।
1: भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो हमें गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है। ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोलभाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोच कर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूँगी, पर वहाँ जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात
1: बता
0: लिखी
1: दिया
0: है,
1: जी,
0: और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें ऐसा
0: सुनते हैं।
1: जी।

0: अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल
1: वहां पे
0: भाव
1: लगे
0: किए
1: हुए
0: जा
1: हैं
0: रहे।
1: बिल्कुल।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि हर हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा लें तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना,
1: हाँ
0: अच्छा
1: ये बात
0: करी
1: तो है,
0: पत्ता
1: करी
0: भी
1: पत्ता
0: डाल
1: बस
0: दो।
1: डाल दो।
0: वो फ्री में लेने में क्या मिलता है, ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मूल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं हैं मूल
1: बिल्कुल,
0: भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप
1: और
0: ज़रा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं,
1: बिल्कुल आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पक रही
0: कैसे?
1: है। देखिए, जहाँ पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहाँ जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे
1: श्रोताओं ने
0: की
1: लिख भेजा
0: एक
1: है कि
0: टांग, ये भी एक
1: हाँ
0: मुहावरा है।
1: ये भी एक
0: अब
1: मुहावरा।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया है कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो, ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और
1: जी
0: अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा, ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया, और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी, तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की
1: जी
0: इस तरह के मुहावरे, तो वहाँ पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है,
1: जी
0: तो अर्थ बदल जाता
1: अर्थ
0: है।
1: बदल जाता है। और देखिए, यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है। ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं। वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए। यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, फिर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे, मोल भाव के लिए इन्होंने लिखा है,
1: जी
0: और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ, पर अब नहीं करते सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था बहुत सारा, तरह तरह के डिज़ाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं पूरी की पूरी झुंड में हैं लड़कियाँ और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियाँ औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपये दे दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे
1: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी जहाँ पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना, तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है
0: तो 100 रुपए में मिल जाएगा। आज तो हम सबकी हम आप भी खिचड़ी पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारी एक श्रोता ने लिखा है कारी कारे बादरा, सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है वहाँ के लिए क्या है, वो गर्मी से जहाँ परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा, तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनियाँ आएं और इतनी संतुलित बारिश लेकर आएं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं, और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं।
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए हैं, और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग

0: ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा।
1: जी
0: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा
0: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस
1: जी
0: तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं।

0: रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है,
1: हाँ
0: लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो
1: जी
0: ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है,
1: हाँ
0: आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो, बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस
1: हाँ
0: जाता है, तो उसमें
1: हाँ
0: फंस सा गया था।
1: अच्छा
0: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा। तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया,
1: जी
0: वहाँ पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं
1: जी
0: एक बार आके गया।
1: अच्छा
0: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है,
1: जी
0: तब मैं 20 साल का था। लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज़ का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज़ के
1: हाँ
0: बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे 1 महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कम्प्लीटेड माई इंजीनियरिंग, आई कम्प्लीटेड माई एमबीए,
1: अच्छा
0: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ। मैंने गोवा में 1 साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है, मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है। तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच। मैं यहाँ पे हाइपर सिटी में जॉब करने आया,
1: अच्छा
0: सो 2 2.5 साल लग गए। उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने
1: मतलब
0: ऑडिशन
1: पहली
0: दिया
1: बार आए तो एक नौकरी के लिए आए।
0: नौकरी के लिए।
1: अच्छा
0: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की, 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी।
1: जी
0: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया, जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला।
1: जी ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया।
0: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या
1: जी
0: स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है,
1: हाँ
0: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहाँ पे स्कोप था,
1: जी
0: क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहाँ से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है,
1: हाँ
0: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहाँ पे होती है।
1: हाँ हाँ
0: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे
1: एक
0: थे।
1: उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं,
0: जी
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
0: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूं, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: क्या
0: था,
1: बात है, क्या
0: तो आई नेवर इमेजिन एनी अदर
1: बात है, वाह वाह वाह वाह
0: प्रोफेशन।
1: वाह,
0: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक
1: हाँ
0: हम करते रहते थे। 5th स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था,
1: हाँ
0: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है
1: हाँ
0: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है,
1: जी
0: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया,
1: जी
0: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड,
1: बिल्कुल
0: उन्होंने
1: बिल्कुल।
0: वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है।
0: बहुत ज्यादा
1: ये
0: मैं
1: कितने तने दिनों तक चला?
0: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा एमबीए जब मेरा पास आउट हो गया,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो, तो मैं
1: अच्छा
0: चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
1: हाँ
0: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं। तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद, 6 महीने, और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जब आपको समय मिलता है शाम को 7 8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा
0: या फिर बस करना है इसलिए किया, सर्वाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद्व होता था
1: जी
0: कि
1: जी
0: यार ये नहीं करना चाहता हूँ, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है।
1: ओह
0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूं, उस नजरिए से अगर बात करें
1: हाँ
0: तो

0: जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: ये
1: गाना।
0: एक बहुत खूबसूरत सा गाना है।
1: आइए सुनते हैं।

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के
0: हाँ
1: लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के, मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज़ काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी, रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं।
0: हाँ
1: सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के

0: ये इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
1: जी
0: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था,
1: हाँ
0: तो वो सब करते करते बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं थोड़ा
1: अच्छा
0: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक अथॉरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
1: जी जी
0: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
1: अच्छा
0: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
1: अच्छा
0: मैंने बहुत करीब से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया
1: जी
0: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
1: जी
0: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफ़ी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
1: जी जी
0: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आपापुर में अभी बात कर रहे हैं, तो
1: सहज और स्वाभाविक
0: सहज और स्वाभाविक
1: अभिनय जिसे
0: अभिनय
1: कहा
0: जिसको
1: जाता है।
0: कहते हैं,
1: जी।
0: तो वो मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
1: जी
0: थिंग। तो
1: जी
0: ये मुझे वहाँ से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
1: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
0: मैं सभी चीज़ों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
1: जी।
0: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीज़ें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहाँ जहाँ मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो फोर इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
1: जी
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
1: हाँ
0: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है,
1: जी
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
1: जी
0: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ,
1: जी
0: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
1: जी
0: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ, बट
1: हाँ
0: हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर, सो
1: अच्छा
0: दैट इज थिंग।
1: चलिए यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ,
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो
0: गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़
1: हाँ
0: जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो उस टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी
1: जी
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था। कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो भी वाकया जो है कि
1: जी
0: पहली
1: जी
0: फिल्म कैसे मिली।
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने जा रहा था कि बच्चा साहब के जमाने में सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय, कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर।
1: जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तब तक

0: संघर्ष रहेगा, उसको हम
1: जी
0: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
1: हाँ
0: डिपेंड है।
1: यस
0: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
1: हो
0: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
1: अच्छा
0: वो चीज़ें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
1: हाँ
0: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
1: जी
0: तो ये चलता रहा काफी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
1: लेकिन मना करना
0: लेकिन
1: पड़ता
0: मना करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
1: जी
0: वेरिएशन ना दे पाऊं
1: जी जी
0: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
1: हाँ
0: से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
1: जी
0: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
1: अच्छा
0: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
1: जी अनाज का
0: अनाज का
1: कोठार।
0: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
1: जी
0: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
1: हाँ
0: जहां पे लोग आके उस पर धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
1: हाँ
0: कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे ही एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार दो बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
1: जी
0: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़बा आप उसमें डालोगे
1: जी
0: अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
1: अच्छा
0: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
1: जी
0: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी। उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
1: अच्छा
0: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था,
1: जी जी
0: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते
1: हाँ
0: होंगे।
1: हाँ बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था, इसमें सारे बड़े नाम,
0: बहुत
1: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
0: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
0: हूँ। बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है,
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
1: जी
0: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
1: ओहो
0: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
1: जी
0: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
1: हाँ हाँ
0: हमारा शो और उनका शो KBC, और वो
1: जी
0: हम
1: जी
0: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
1: हाँ
0: करने का,
1: हाँ
0: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा। मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा,
1: जी
0: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे 1 मिनट अलग से बात करनी है। जैसे
1: अच्छा
0: अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, ले 1 मिनट बात करनी है।
1: हाँ
0: तो वो आए, बटन साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
1: हाँ
0: अरे क्या हो गया?
1: अच्छा
0: मैंने सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
1: हाँ
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। लाफ द सेम वे द वे यू
1: ओहो
0: लाफ,
1: अच्छा।
0: बोला मुझसे होता नहीं
1: हाँ।
0: है।
1: यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे? हाँ
0: बिल्कुल मुझे उनका एक

0: बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टुगेदर्स में,
1: हाँ
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे,
1: हो
0: आई लव दैट सॉन्ग। इट स्टार्ट्स विथ हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं
1: क्या
0: हमेशा
1: बात, चलिए सुनते हैं।
0: हम

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार।
1: बिल्कुल
0: और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो। मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी,
0: हाँ
1: रितेश देशमुख
0: हाँ
1: साहब थे वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी।
0: जी
1: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ, कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक वो
0: हाँ
1: एक फिल्म थी। और एक ताज़ा खबर नाम के वेब
0: वेब
1: सीरीज
0: सीरीज
1: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
0: जी
1: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा। नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब,
0: जी
1: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने उस सत्या का कैरेक्टर किया।
0: हाँ
1: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
0: जी
1: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था, जो कि ग्रे शर्ट था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
0: हाँ
1: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
0: अच्छा
1: रंजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
0: हाँ हाँ
1: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में,
0: जी जी
1: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखों की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
0: हाँ
1: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
0: जी
1: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ। उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
0: अच्छा
1: तब हमारे रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई
0: अच्छा
1: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जू चलो,
0: अच्छा
1: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
0: हाँ
1: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा, तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर? अरे
0: हाँ
1: राजकुमार संतोषी।
0: अच्छा
1: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
0: ओहो
1: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत, मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई, उनके साथ ऊपर गया।
0: हाँ
1: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे कहीं।
0: अच्छा
1: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
0: अच्छा
1: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट, टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
0: अच्छा
1: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ और राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था। हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
0: हाँ
1: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था, जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया
0: हाँ
1: कि डीएसपी राणा नाम के उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था,
0: जी
1: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे। रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
0: हाँ
1: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है।
0: बराबर
1: देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई
0: अच्छा
1: वर्क विद हिम। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम आल्सो।
0: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
1: जी
0: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
1: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
0: हाँ
1: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की। आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है।
0: जी
1: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है,
0: हाँ,
1: आगे,
0: उसकी
1: और
0: एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
1: डेडलाइन
0: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है।
1: होना ही है,
0: जी
1: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख है, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है, और आपके पास में बहुत सारा काम होता है,
0: जी
1: बिकॉज
0: जी
1: महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
0: जी
1: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक, वो था वागले की दुनिया।
0: हाँ जी
1: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये
0: जी
1: दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का, तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
0: क्या बात है।
1: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौसी, भारती आचरेकर,
0: जी
1: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे
0: जी जी
1: वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
0: बिल्कुल
1: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
0: अच्छा
1: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था, बट ये कैरेक्टर बड़ा ही अपने आप में मुझे
0: ये मुझे
1: पसंद है।
0: लगता है 2022 की बात है।
1: जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
0: हाँ
1: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
0: हाँ
1: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है, वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है, वो
0: हाँ
1: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
0: अच्छा
1: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
0: बिल्कुल
1: वाले। तो
0: बिल्कुल
1: कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी

0: पर्सनैलिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
1: जी
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल
0: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहे
1: जी
0: हैं
1: जी
0: वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता
1: वो
0: था।
1: दर दर भटकने वाली बात है वो
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई
1: हाँ
0: है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं, कोई कोई काम नहीं है।
1: ओह
0: तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मज़ा था, वो
1: हाँ
0: सफ़र है।
1: अच्छा
0: मंजिल पे पहुंचने का मज़ा तभी आता है जब सफ़र अच्छा हो।
1: हाँ
0: अगर सफ़र आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब फिर?
1: बराबर
0: तो एक अलग मज़ा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है।
1: हाँ
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी समय होगा, पर जब भी मिलेगा ये सफ़र आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात है। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो।
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: है, क्या
0: गया
1: बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता
1: हम दोनों
0: चला।
1: फिल्म का गाना है,
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत है।
0: बेहद लोकप्रिय
1: आइए सुनते हैं।
0: जी।

0: नमस्कार। 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम न्यूज हेडलाइन से।
1: सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की विनिर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा किया जा रहा यह विस्तार प्रदेश को निर्माण उपकरण और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सभी मंत्रालयों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:02 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

कहते हैं बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होते हैं। जापान की एक खूबसूरत सोच है काइज़न, जिसका अर्थ है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। ज़रा सोचिए, अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन में सिर्फ एक छोटा सा सुधार करें, एक प्लास्टिक की बोतल कम इस्तेमाल करें, एक पौधा अधिक लगा दें, या फिर अपने पुराने मोबाइल चार्जर और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को कूड़ेदान में फेंकने की बजाय सही जगह जमा करें, तो क्या होगा? शायद आज यह बदलाव छोटा लगे, लेकिन कल यही आदत हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी ताकत बन जाएगी। और इसी काइज़न की सोच से जुड़ा है आज का हमारा बेहद महत्वपूर्ण विषय, जिसका नाम है ई वेस्ट का प्रबंधन। नमस्कार साथियों, आवाज है आपके रेडियो दोस्त तुषार तमिल सेना की। स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है युवाओं की वाणी, युववाणी। गुड इवनिंग।

शाहिद माल्या की आवाज़ में सुनाइए गीत फिल्म मौसम से। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत था प्रीतम का। साथियों, आज के आधुनिक समय में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, बैटरी, चार्जर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन जब ये उपकरण खराब हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं तो इन्हें ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। ई वेस्ट का सबसे बड़ा खतरा है इसमें लेड, मर्करी, कैडमियम और अन्य हानिकारक तत्वों का होना। यदि इन्हें

CFL LED को खुले या गीले स्थान पर न रखें। इन्हें किसी बंद डिब्बे या सूखे कमरे में सुरक्षित रखें। ई वेस्ट को कभी भी घरेलू गीला या सूखे कचरे के साथ न मिलाएं। इसे अलग से संग्रहित करें। खासकर पुरानी बैटरियों को बारिश में खुला ना छोड़ें। इसमें लीकेज होने से आग लगने या रासायनिक प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार या किसी संस्थान की जिम्मेदारी नहीं है। यदि हम सभी अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान का सही तरीके से रिसाइकलिंग करेंगे तो हम एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में योगदान दे सकते हैं। क्योंकि बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे और आज से होती है। तो साथियों, ये थी कुछ बातें ई वेस्ट के प्रबंधन के ऊपर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

अमित त्रिवेदी का। तो साथियों अब तैयार हो जाइए, अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय है रोजगार सूचना का। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी द्वारा आईओबी अप्रेंटिस के कुल 750 पोस्ट के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन आज से यानी 7 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 20 जुलाई। आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप आईओबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.bank.in पर जाकर जानकारी प्राप्त और 750 आईओबी अप्रेंटिस के लिए अंतिम तिथि है 20 जुलाई और आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदक की आयु 20 वर्ष से कम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है www.iob.bank.in। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

जावेद बशीर श्रेया घोषाल की आवाज़ में सुनाए गीत फिल्म भाग मिल्खा भाग से। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 5 मिनट में आप एक नई स्किल सीखना शुरू कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करोगे? आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें और घंटों की क्लास ही सीखने का एकमात्र तरीका नहीं रह गई है। अब ज़माना है माइक्रो लर्निंग का। माइक्रो लर्निंग का अर्थ है किसी विषय को एक साथ लंबे समय तक पढ़ने की बजाय उसे छोटे छोटे भागों में और कम समय में सीखना। उदाहरण के लिए, रोज़ केवल 10 से 15 मिनट देकर अपने विषय का एक नया टॉपिक सीखना, किसी सॉफ्टवेयर का एक फीचर समझना या किसी विषय का एक छोटा वीडियो देखकर नई जानकारी प्राप्त करना। इससे सीखना आसान भी हो जाता है और याद भी लंबे समय तक रहता है। और यही जो आपने सीखा है उसे आपकी ज़रूरत, आपकी रुचि और आपके करियर के हिसाब से तैयार किया जाए तो उसे कहते हैं स्किल कस्टमाइजेशन। यानी हर व्यक्ति के लिए सीखने का अपना अलग रास्ता। यदि कोई छात्र पत्रकार बनना चाहता है तो उसे लेखन, संवाद और कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि कोई तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या डिजिटल स्किल सीखने चाहिए। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल तकनीक की मदद से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी गति से और अपनी रुचि के विषय चुनकर सीखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। इसलिए आज के दौर में केवल डिग्री ही नहीं बल्कि सही समय पर सही स्किल सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माइक्रो लर्निंग हमें कम समय में प्रभावी ढंग से सीखने का अवसर देती है, जबकि स्किल कस्टमाइजेशन हमें अपनी क्षमताओं को सही दिशा में विकसित करने में मदद करता है। यही शिक्षा और रोजगार की दुनिया में एक नया बदलाव ला रहे हैं और हमें बदलती दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। तो ये थी कुछ बातें माइक्रो लर्निंग और स्किल कस्टमाइजेशन पर। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में सुने गीत फिल्म मैं हूं ना से, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था अनु मलिक का। साथियों, घड़ी की सुई अब हमें इशारा कर रही है कि आपसे विदा लिया जाए। आशा और उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, अपने स्किल पर ध्यान दीजिए और सुनते रहिए आपका मनपसंद कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त

युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी

0: एक्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म मल्हार से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीत इंदिवर का और संगीत रोशन का।

फिल्म उम्मीद का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, गीत शकील बदायूनी का और संगीत रवि का। और अब सुनिए फिल्म अजनबी का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में, संगीत आरडी बर्मन का।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: इस अंतराल से पूर्व आप सुन रहे थे श्रीमान सत्यवादी का गीत मुकेश के स्वर में, गीत गुलजार दीनवी का और संगीत दाताराम का। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सुर्खियों में रात 8:00, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6:00, लोक संगीत में बेड़ीलाल अहिरवार के गाए लोकगीत शाम 6:30 पर, सुगम संगीत शाम 6:45 पर, कलाकार अविधा सिकरवार। कृषि जगत में आज सुनिए फलदार वृक्षों का प्रबंधन विषय पर डॉक्टर ऋचा सिंह की वार्ता शाम 7:21 पर। फोन इन कार्यक्रम रात 9:30 पर। प्रस्तुतकर्ता सावनी राजू। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा की रिकॉर्डिंग सुनिए 10:00। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन, तबले पर संगत पंडित विनोद लेले की। श्रोता, ये थे आज के कार्यक्रम और अब सुनिए कल की सभा के कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में विश्व दर्पण सुबह 10:10 पर, चर्चा का विषय रात 9:30 पर। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। जिले की चिट्ठी दिन में 10:00, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम दिन में 11:00 से। सुर्खियों में रात 8:00, आकाशवाणी जबलपुर के कार्यक्रमों में भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर, चिंतन 6:30 पर, श्री रामचरित मानस गान सुबह 6:35 पर, कृषि सामिकी में सब्जी फसल के लिए सुझाव सुबह 6:45 पर, गुड मॉर्निंग जबलपुर का आकर्षण होगा कलाम ए शायर सुबह 7:20 पर, लोक रसधार में गोविंद नारायण दुबे के गाय लोकगीत सुबह 9:00, वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं सुबह 10:05 पर, सारंगा सुबह 10:20 पर, सांध्यकालीन सभा में एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6:00, लोक संगीत में सीमा शुक्ला को सुनिए शाम 6:30 पर, सुगम संगीत शाम 6:45 पर, कलाकार दिलीप कोरी। कृषि जगत में मक्का और मूंग की अंतर्वर्ती खेती विषय पर श्री कृष्ण शंकर त्रिपाठी की वार्ता शाम 7:21 पर। शास्त्रीय संगीत में सुनिए संतूर वादन रात 10:00, कलाकार पंडित शिव कुमार शर्मा, तबले पर संगत शफाकत अहमद खान की, और मन भावन रात 10:30 पर। तो श्रोताओं, यह था कार्यक्रम विवरण और अब सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस आकाशवाणी भोपाल से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और स्थिरता भी बनी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा किया जा रहा यह विस्तार प्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज TT नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे

0: शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
3: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
3: जी
2: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
3: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
3: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
3: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
3: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
3: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
3: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
3: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
3: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
3: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
3: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी
3: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
2: जी ये जड़ें कम

0: द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओ, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी,
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces...
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया, को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ, आओ चलो।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसे चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं, अल काहिरा।
1: हाँ
3: पापा, पापा वो देखो,

0: नील नदी है ना?
1: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
2: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
1: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
2: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
1: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो, वो देखो, औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
0: हाँ।
1: चलो।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ खादे, आओ आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे। इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली पूछ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लोक संगीत में आज सुनिए बेड़ीलाल अहिरवार के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत।

अभी आप लोक संगीत के कार्यक्रम में बेड़ी लाल अहिरवार के गाए कुछ लोकगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे अविदा सिकरवार के गाए कुछ गीत।

इसके साथ ही आज का सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आज आप इसमें सुन रहे थे अविदा सिकरवार के गाए कुछ भजन। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना का किया शुभारंभ। 20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के पीथमपुर में चीनी कंपनी के नए विनिर्माण संयंत्र का करेंगे भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों का है और भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक व आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य की साझा दृष्टि का उल्लेख किया।
1: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। श्री शाह ने बताया कि 1994 में अधिसूचित 7,784 हेक्टेयर रिज क्षेत्र में अब तक 5,000 हेक्टेयर को वन क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और जल्द ही पूरे क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन और जामुन जैसे दीर्घजीवी पेड़ लगाकर रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादकता मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। उन्होंने प्रति एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट एवं मापने योग्य लक्ष्य तय करने की भी बात कही। वहीं दूसरी तरफ श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्यक्रम के तहत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो एक गांव में 100 से 200 किसानों के साथ मिलकर कृषि कार्य में बदलाव लाने का काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस भेंट में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की परियोजनाओं और योजनाओं पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। ये चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी का 20 एकड़ में विकसित होने वाला नया संयंत्र है। इस प्रोजेक्ट में करीब 27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। संयंत्र में प्रारंभिक चरण में प्रतिवर्ष 6,500 एक्सकवेटर के निर्माण की क्षमता विकसित की जाएगी। कंपनी 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है, जहां 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर का उत्पादन होता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सपाक्स संस्था के अधिवक्ताओं ने मांग की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक राज्य में सभी पदोन्नति प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए। संस्था ने विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताते हुए इन्हें न्याय संगत नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि इसे अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में प्रदेश की मेडिकल सप्लाई चेन व्यवस्था की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त दवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर 10 वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे, जहां हाई एंड तकनीक से दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के बाद ही दवाओं का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने 190 तहसीलदार एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। ये पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कक्षा 5वीं में 80.42% और कक्षा 8वीं में 74.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा को मिलाकर कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 98.89 और कक्षा 8वीं का 98.19% रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, शूटिंग और घुड़सवारी सहित विभिन्न खेल विधाओं में क्वालिफाई किया है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी और टीम सदस्य जूट से तैयार विशेष परिधान पहनेंगे। इसे वस्त्र मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने जूट विस्कोस मिश्रित कपड़े से विकसित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत इस पहल का उद्देश्य जूट उद्योग को नई पहचान देना और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना है। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में अपने प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को फिलहाल लॉन्च नहीं करने का फैसला किया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिया है कि अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत पूरी होने तक ये फीचर देश में शुरू नहीं किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महापौर मालती राय ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजधानी भोपाल के 3EME सेंटर में पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खंडवा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और विधिक सहायता की जानकारी दी गई। नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने सपरिवार संकट मोचन हरकियाखाल मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सीहोर में RTE के तहत निजी स्कूलों की खाली 1651 सीटों पर तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोकनगर कलेक्टर ने साप्ताहिक जनसुनवाई में 408 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित पुल और रपटों पर ड्रॉप गेट लगाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर लंबित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। झाबुआ में डायरिया से बचें हर बार अभियान के तहत ग्राम कालापीपल में जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज में श्वानों के लिए कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग किया गया है और भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाले बैरसिया नरसिंहगढ़ मार्ग पर पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। SDM आशुतोष शर्मा ने नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए ये आपातकालीन आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनबे बारे सबई किसान भैया बिन्ना भौजी हरन से माधुरी बिन्ना की राम राम। भैया हरो, आज हम सोच रहे थे अपने भैया हरन से एक बात कहें। वैसे बात तो हम हमेशा कहे थे और आज की बात भैया बड़ी अच्छी है। कहें कैसे? वो ऐसे भैया कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास में आसपास में जितनी भी चीज़ें हमारे भैया हरे उत्पादन कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें ले आ रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं, मिर्ची तो धनिया तो अदरक तो लहसुन और हमारे फलन फल देखे तो फल देखो आजकल जामुन आ रही हैं, आम आ रहा है, मतलब कितनी चीज़ें आ रही हैं, तो इन्हीं की हम बात करने वाले हैं। तो आप कहो कि बिन्ना आप तो हमेशा बातें करती हो और हम तो जो सामान उगाते हैं तो वो तो सब बाज़ार में बिक जाते हैं, आप इमें एक नव का बतावे वाली हूँ। तो भैया नव की बात जा है कि आज हम गए थे अपनी कमला काकी के थे। अब जब हम चौपाल आ रहे थे सो चौपाल हम अपने घर से तनक पहले ही निकल गए थे, सो मिल गई हमें कमला काकी। सो बोल लेंगे अरे बिन्ना कहाँ जा रही? सो हमने कि जा रहे हैं चौपाल तरफ, तनक साग भाजी लिए तो भाई चले जाए। सो बोलने लगी वो तो ठीक है, आओ बिन्ना तनक हमारे पास में तो बैठ लो। सो हमने कि तुम्हारे पास में बैठ के का करें काकी, अब काम धंधा तो करना ही पड़ा थे जो का बरसात को मौसम चल रहा है, अबे बरसात होने लगे तो हम तो पहुँचना पे हैं, तो हम तो जा रहे जल्दी से। अरे बोली अरे तुम भी जल्दी जल्दी भागती रहती हो, आ तो जाओ तनक, अबे देखो बरसात को मौसम चल रहा है तो हमने अच्छी भजिया बनाए हैं तो तनक सी खा लो, बताओ कि कैसे बने काकी। सो हमने कही चलो ठीक है। सो हम उनके ते गए, सुनने हमें बढ़िया भजिया खवाई और बाद में बोलने लगी, हम बोलने लगी कैसी लगी? सो हमने कि अच्छी तो लगी लेकिन हमने उतने देखो कि बहुत सारी मिर्ची, हरी हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन बहुत सारा रखो तो। सो हमने कि भौजी का कर, हमने कि काकी का कर रही हो जो सब देख, हम देख रहे हैं कि यह देखो बरसात को मौसम है, इस समय में तुम है ना जी तो सारू सब सामान ले के रखी हमें कच्चे दिन बाद एक कई दो दिन बाद भी सड़ जाने। सो बोली यहाँ बिन्ना ऐसे कैसे सड़ जाए? सो हमने कि अच्छे तुमने तो धो धा के रखी हैं और इनके डंठल मंठल भी अच्छे तोड़ ताड़ के रखो, जो करवे का वाली हो जा बताओ। सो बोलने लगी कि अरे बिन्ना हम खाद्य प्रसंस्करण कर रहे हैं। हमने कि खाद्य प्रसंस्करण कैसे तुम करने लगी, जा तो बताओ। सो बोलने लगी कि अरे आप ही हो ना तो बताती रहती कि है ना जितो भी सामान हमारे भैया रहे उगाते हैं जितो बिक जात सो बिक जात और जितनों नहीं बिक पात वो सड़वे में चलो जाते हैं, तो आप ही हो ना बताती हूँ वही को हम काम कर रहे हैं। हमने कि कैसे काम कर रहे हैं? सो बोलने लगी देखो जितनी सारी मिर्ची हैं हमने इनको बढ़िया धो धा के साफ कर लो और साफ करने के बाद उन्हें सुखा दो, सुखा भी के बाद बढ़िया डंठल जितने हैं वे चूड़ ताड़ के साफ कर लें, उसके बाद भी हमने थोड़ी सी सुखा दो और फिर अदरक लहसुन जो सब चीज़ हम साफ करके छील छाल के साफ करके रखी और अच्छी धूप अच्छी हवा हवा में सुखा दो ताकि उसकी जितनी भी पानी है वो ख़त्म हो जाए। मैं ठीक है बोली, फिर हम इको पीस हैं और पीसवे के बाद वो सिरका नहीं है जिन्हें विनेगर कहते हैं वो डार दो, अच्छा नमक डार दो, सरसों को तेल डार दो और फिर बढ़िया इको बन गो पेस्ट। तो हमने कि फिर का बोले जी पन्नी धनी है तेरे बढ़िया ईखों अच्छो पैक करके और बाजार में बेचें। सो हमने कही कि जा तो वह साँची है और बिक कहाँ रहो है? बोले देखो बिन्ना आजकल सब जगह बिक रहो है, चाहे ढाबा होए होटल होए और

घर हूँ, घर हैं। अब घर में सब जने आप बाहर काम करवे वाले हैं, अब को सब काम कर रहा है कि साफ करो, छीलो, इसे जी रेडीमेड चीज़ें चलन लगी हैं आजकल। सो ये सब चीज़ें हमारी बिकन लगी हैं। हमने कही काकी तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर लो। सो बोली वही तो बिना आप और कहने लगती खाद प्रसंस्करण, खाद प्रसंस्करण। अब देखो गर्मी को मौसम तो है नहीं है कि अपन को सुखाने हैं, तो धूप है, छानने हैं, बीनने हैं, जो सब काम कर रहे हैं। अब तो जो काम तो हो चुको है, अब को बरसात के मौसम में अपन कौन कौन सी चीज़ों को खाद प्रसंस्करण कर सकते हैं, जिन कौन कौन से अपन है ना सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे उनको उपयोग में ले आ सकते हैं। आप और हमेशा बताती रहती हूँ, तो हमने आज वो सब काम कर डालो। तो हमने कि अच्छा काकी जा तो तुमने अच्छी करी, और का चीज़ कर रही हूँ। बोले हम सोच रहे हैं कि आजकल जामुन खूब आ रही हैं, तो हमने कि कहे जामुन को का करवे वाली हूँ। बोले जामुन को अच्छे तोड़वा के साफ करके अच्छो सुखा के उसको पल्प निकाल के फिर उखो पका के पास्चुकर नहीं कहती हूँ कि उखो अच्छो पका लो और फिर बाद में ठंडू करके बोतलन में भर दो, वो सो ही हम करवे वाले हैं। हमने कि काकी बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ, जो तो साँची है। देखो साल भर में जामुन आती हैं कितनी हैं, तनक दिन के बाद आई हो लो ख़त्म हो गई। और जौन हमारे भैया रहे हैं जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज के हैं थे जी को, वो तो उनके लाने तो बहुत मतलब रामबाण है, बहुत उपयोगी है, बहुत फ़ायदेमंद है। सो बोलने लगी यही तो हम सब सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें अपन काम करो जाए तो जी से है ना जी फल जौन अपने लगाते हैं जी ख़राब भी ना हो, बर्बाद भी ना हो और उनको अपन साल भर उपयोग भी कर सकें। तो ऐसे करके भैया हमें तो बहुत अच्छी लगी काकी की बातें, और हम तो चाहते कि हमारे जितनी भैया हैं बिन्ना भौजी हरे हैं वे इन सब चीज़ों को उपयोग करके जो हमारे जितनी भी फल हैं सब्जियां हैं ख़राब हो जाती हैं उनको हम संरक्षित कर सकें और उनसे कछु चीज़ें ऐसी बना सकें जो अपन साल भर इस्तेमाल कर सकें और वे तो अपनों रोज़गार के रोज़गार भी बढ़े और साथ साथ में अपन आय की आमदनी भी हुई है और चीज़ें भी ख़राब ना हुई हैं तो दुख भी ना हुई है। तो भैया दुख की बात से याद आई कि मन खुश भाव चाहिए और मन खुश होवे के लाने संगीत भी भाव चाहिए। और संगीत तो ऐसा है कि देखो आज है मंगलवार और हमारी काकी करती हैं हमेशा मंगलवार को भजन। सो हम तो हमने कही कि काकी तो देखो संजय बिरिया तो हो ही रही है, आपने भजन किलाने का करो। सो बोलन लगी बिन्ना आप ही चौपाल में सुनवा दियो भजन। सो हमने कही चलो ठीक है, तो भैया हमारी काकी तो सुने और आप और भी सुनो। तो जो प्रीतम सिंह ठाकुर को गाओ भाव जो सुनत हैं उन्दासु भजन।

0: हाँ तो भैया हरो, अभी अपन ने जो उंदा सो अपन लोकगीत सुनो, प्रीतम सिंह ठाकुर को गाओ हो, और हम अपने भैया से जो कहबो चाहते हैं कि देखो बरसात को मौसम चल रहा है और हमारे भैया हरन ने पहले से तैयारी कर ली हुई है कि भैया बरसात को मौसम आ है और हमें हमें तो अच्छे फल वृक्ष लगाने हैं। तो हमारे भैया हरन ने पता चलो मई में या जून में ऐसी गड्ढा अड्ढा खोद खाद के उनके तैयार कर ला हुई है, उनमें जितनी भी खाद डाल रहे हैं खली डाल रहे हैं सब कुछ तैयार करके रखो हुई है कि अब तो भैया बरसात को मौसम आवे वालों है और हम बरसात के मौसम में बढ़िया बढ़िया फल वृक्ष लगाएं ताकि हमें भी अच्छी आमदनी मिल सके। तो भैया उनमें अपन को कैसे कैसे अपन को पौधन को रोपण करने हैं, कैसे चुनाव करने हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ रखने हैं, इन सब चीज़ की जानकारी भी अपन को होवे वाली होवो जरूरी है। तो ई के लाने जरूरी है कि हमें जानकारी हो। तो भैया बिल्कुल देर नहीं कर रहे और आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसी जानकारी, फलदार वृक्षों को प्रबंधन, और जो जानकारी दे रही हैं डॉक्टर ऋचा सिंह, और उनसे बातचीत करी है विपिन भैया ने, तो अपन जो जानकारी सुनत हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, राम राम। आज बात करेंगे फल वृक्षों में, फल बागों में प्रबंधन के बारे में डॉक्टर ऋचा सिंह जी से, जो कि कृषि महाविद्यालय जबलपुर से हमारे बीच में आई हुई हैं। ऋचा जी, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: फलदार वृक्षों के प्रबंधन की बात हम कर रहे हैं तो किसान भाइयों बहनों को आप कैसे समझाएंगी ये?
2: जब हम कोई फल उद्यान लगाने जाते हैं तो वहाँ पर रोपण से लेकर के उसकी कटाई तक जो भी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं उन्हें हम फलदार वृक्षों का प्रबंधन कहते हैं।
1: फलोद्यान के लिए यदि हम योजना बनाना चाहें, जैसे कि अभी ये महीना चल रहा है जुलाई का, तो इसमें किन बातों का ध्यान रखें हमारे किसान बहन भाई?
2: बगीचा जो है वो लंबे समय के लिए लगाया जाता है, यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जल भराव की स्थिति ना बनती हो, वहाँ की मृदा उपजाऊ हो। यदि हमें दोमट मिट्टी मिल जाए तो वो फलदार वृक्षों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसके बाद बात आती है कि मिट्टी का पीएच मान जो है 6.5 से 7.5 के बीच रहता है तो मृदा बहुत ही उपयुक्त होती है। प्रत्येक 2 से 3 वर्षों में हमें सॉयल टेस्टिंग कराना चाहिए, इससे हमारे मृदा में किन पोषक तत्वों की मात्रा किस मात्रा में है, मतलब अधिकता है या कमी है, उसके हिसाब से हम फलदार वृक्षों में जो भी हमें पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है हम उचित प्रबंधन करके उन्हें दे सकते हैं।
1: ठीक है।
2: फलदार वृक्षों को लगाने के लिए हमें 1 बाई 1 बाई 1 मीटर का गड्ढा, मतलब लंबाई 1 मीटर, गहराई 1 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर, इस हिसाब से गड्ढा कर ले हम मई के महीने में, और उसमें जो है गोबर की खाद, नीम की खली, ये सब डाल करके हम इसको खुला छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से अधिक तापक्रम रहता है इस टाइम पर, इससे जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं या कवक होते हैं ये इसमें नष्ट हो जाते हैं। जो हम पौधे लाते हैं वो हमें किसी सर्टिफाइड नर्सरी, मतलब प्रमाणित नर्सरी से रोग मुक्त पौधे का ही चयन करना चाहिए। पौधे को हमें उचित दूरी पर लगाना चाहिए। यदि हम आम की बात करें तो उसके लिए 8 से 10 मीटर की दूरी हो सकती है। अमरूद के लिए अलग होगी, पपीता के लिए 1.5 से 2 मीटर की दूरी रख सकते हैं।
1: जी, हमारे क्षेत्र के हिसाब से यदि हम देखें, जलवायु देखें, फलों की मांग देखें, तो कौन कौन से फल बाग हैं जो हमारे यहाँ हम लगा सकते हैं?
2: अपने यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण उपोष्ण जलवायु है।
1: जी।
2: इस जलवायु में हम आम हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, सीताफल हो गया, जामुन हो गया, इन सारे फलदार वृक्षों को लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर यदि कहीं पर जल भराव की स्थिति बनती है तो वहाँ पर हमें पपीता और केला नहीं लेना चाहिए, क्यों इसमें कि तना गलन की समस्या आ सकती है। इसमें महत्वपूर्ण होता है कि हम कौन सी किस्में लें। आम में आप देखिए दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, आम्रपाली हो गया, मल्लिका हो गया, अनेकों अनेक किस्में हैं। आम में आपको पता है प्रत्येक वर्ष फल नहीं आते हैं, एक वर्ष फल आते हैं, एक वर्ष फल नहीं आते हैं। तो यदि आपको इससे बचना है तो हम आम्रपाली और मल्लिका किस्म के पौधे हमें लगाना चाहिए जिसमें प्रत्येक वर्ष फलन होता है, और इसको हम सघन बागवानी पद्धति से भी लगा सकते हैं। सघन बागवानी से तात्पर्य यह है कि उसी स्थान पर हम पौधों को बहुत नजदीक लगाते हो तो पौधों की संख्या ज्यादा हो जाती है और उत्पादन हमारा 3 से 4 गुना प्रति एकड़ बढ़ जाता है। यदि अमरूद की बात करें हम तो इलाहाबाद सफेदा हो गया, लखनऊ 49 हो गया, चित्तीदार हो गया। आंवला की यदि हम बात करते हैं तो नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 5, कंचन। जामुन की हम बात करें तो आजकल CISH J37 वेराइटी है जो की गुठली रही थी, या फिर ये कहें कि इसमें गुठली बहुत छोटी है।
1: अच्छा।
2: नींबू की हम बात करें तो निश्चित ही कागजी नींबू।
1: फल वृक्षों में सिंचाई की बात करें या पोषण की बात करें, दोनों में आपका मार्गदर्शन क्या होगा?
2: बारिश का समय है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन एक से दो वर्ष की आयु का पौधा है तो उसे हमें गर्मियों में 5-7 दिन के अंतराल में, यदि सर्दी है तो 10-15 दिन के अंतराल में सिंचाई करना चाहिए। वही यदि पौधे की आयु 3-5 वर्ष की हो गई है तो हमें गर्मियों में 7-10 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 15-20 दिन के अंतराल पर, और यदि 6 वर्ष से अधिक आयु को हो गया मतलब फल देने लगा है तब उसको गर्मियों में 10-15 दिन में और सर्दियों में 20-30 दिन में हम पानी देते हैं। जो टपक सिंचाई पद्धति है हमें उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है 60-70% पानी की बचत होती है और पानी पौधों की जड़ क्षेत्र में जाता है। पौधे को पानी की आवश्यकता जड़ में ही होती है, जो हम फ्लड करके देते हैं उससे केवल कचरा, खरपतवार और रोग व्याधियां आती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं खाद प्रबंधन। यदि पौधे की आयु 1-2 वर्ष की है तो गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 10-15 किलो प्रति पौधा, नत्रजन की बात करें तो 100-200 ग्राम, फास्फोरस जो होता है 50-100 ग्राम और पोटास 50-100 ग्राम देना चाहिए। वही पौधे की आयु 3-5 वर्ष हो गई तो यहाँ पर हमें गोबर की सड़ी हुई खाद 20-30 किलोग्राम प्रति पौधा, नत्रजन 300-500 ग्राम प्रति पौधा, फास्फोरस 200-300 ग्राम प्रति पौधा, पोटास 200-300 ग्राम प्रति पौधा। इसके बाद आ जाते हैं हम जब पौधा 6 वर्ष से अधिक आयु का हो गया, वो फलन में आ चुका है तो निश्चित ही यहाँ पर उसकी आवश्यकता बढ़ गई है। तो यहाँ पर हम 40 किलो के करीब गोबर की सड़ी हुई खाद, 800-1000 ग्राम नत्रजन, 500-700 ग्राम फास्फोरस और 500-700 ग्राम ही पोटास देते हैं। अच्छा, कभी भी खाद को एक साथ नहीं देना चाहिए। पहली बार हमें फूल आने के पहले देना है और दूसरी बार खाद हमें जो है फल बनने के बाद देना चाहिए।
1: जी, कई बार खाद और उर्वरक डालने के बाद भी हमारे किसान बहन भाई ये बताते हैं या उनकी शिकायत रहती है कि फल तो लगते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं।
2: सबसे पहली बात, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, बोरान हो गया, यदि इनकी कमी होती है तो भी हमारे फूल और फल झड़ने लगते हैं। यदि पानी की अधिकता या कमी हुई, हार्मोन का असंतुलन, यदि उसमें फ्रूट बोरर आ गया या कोई कवक आ गया है, और तापमान, मौसम, ये भी इस पर
1: परिस्थितियों के हिसाब से
2: डालते हैं।
1: जी
2: तो देखिए, यदि हार्मोन का असंतुलन है तो उसके लिए हम Na 10-20 ppm ले सकते हैं।
1: जी,
2: और आम में जब फल मटर के दाने के आकार के होते हैं उस समय इसका छिड़काव करना प्रभावशाली होता है। नींबू वर्गीय जितने फल होते हैं उसमें जो है सिंचाई और माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनका उचित प्रबंधन करते हैं। अमरूद में जब फूल आने की अवस्था होती है उस समय इस हार्मोन का हम छिड़काव करते हैं।
1: जी।
2: जो पौधा होता है उसकी शाखा में रिंग बना देते हैं, रिंगिंग कहते हैं इस प्रक्रिया को, छल्ला जैसा बाहर की परत को निकाल देते हैं, वहां पर कार्बोहाइड्रेट का संचय हो जाता है, फल बड़े बनने लगते हैं और उनमें मिठास की मात्रा बढ़ जाती है। हमेशा पौधे में खाद जो है तने के पास नहीं देना चाहिए। जो फीडर रूट्स होती हैं, जो खाद या पोषक तत्व को खींचती हैं पौधे के लिए, वो तने से दूर होती हैं। इसलिए पौधे की जो कैनोपी होती है,
1: बाहरी छाया जो होती है
2: उस पे हमें जो है बेसिन बना करके चारों तरफ खोद करके वहाँ पर हमें खाद देना चाहिए, तो वहाँ पे फूल और फल की जो झड़न की समस्या है उसे बच सकते हैं।
1: जी, एक और शस्त्रक्रिया आती है इसमें, छटाई की और सधाई की।
2: पौधे को 2-3 वर्ष की जब उसकी आयु होती है, उसका एक शेप बनाने के लिए जो भी काट छाट की जाती है उसको हम छटाई कहते हैं। तो साइड से शाखाएं निकलने लगती हैं, उससे होता क्या, जो सेंटर पार्ट होता है वो हमेशा खुला रहता है, सूर्य की रोशनी या धूप का प्रकाश वहाँ पर बराबर पड़ता है।
1: जी।
2: तो वहाँ पर कीट, व्याधि, रोग, इन सब की समस्याओं से बचत होती है और हमारा ढांचा मजबूत बनता है। अब इसके बाद बात आती है सधाई की, जिसे हम कहते हैं प्रूनिंग। जब हम फल तोड़ लेते हैं तो हमें ये प्रूनिंग की प्रक्रिया करनी चाहिए। जो भी रोगग्रस्त शाखाएं होती हैं, जो एक दूसरे से सट रही हैं, जो पौधे को बराबर धूप और प्रकाश, रोशनी नहीं आने दे रही, उन शाखाओं की हम कटाई कर देते हैं।
1: अब बात करें कैनोपी प्रबंधन और पलवार या मल्चिंग की।
2: जब हम कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं तो पर्याप्त सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और पौधा हमारा अच्छा फलन करता है। जैसा कि आपको पता है आम को हम 8 से 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, लेकिन यदि हम सघन बागवानी पद्धति पे आते हैं तो यहीं पर इनकी दूरी 5x5 मीटर हो जाती है
1: जी।
2: और अगर हम अति सघन बागवानी पद्धति पे आते हैं तो 3x2 मीटर की हो जाती है। इनकी जो है हाइट मेंटेन करना पड़ता है। मृदा के ऊपरी परत को किसी भी आवरण से यदि हम ढक देते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्च या आच्छादन
1: जी।
2: तो वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। जहाँ पर हम लगा रहे हैं वहाँ पर नमी की मात्रा बराबर बनी रहेगी, खरपतवार ज्यादा नहीं उगेंगे और पौधों में ऑटोमेटिक जो उसमें फल बनते हैं उनमें एक शाइनिंग रहती है।
1: अच्छा, अच्छा।
2: पोटास जो तत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें शाइनिंग रहेगी
1: जी। ऋचा जी, अब चलते चलते आपसे जो जिक्र बार बार हुआ है कि हमारे फल बागों में रोग भी आ सकते हैं,
2: हमें रसायनों के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना है
1: जी।
2: हमें समेकित प्रबंधन करना है। यदि आप लाइट ट्रैप्स लगाते हैं तो कीट पतंगों को आप नष्ट कर सकते हैं, प्रकाश प्रपंच
1: जी।
2: फेरोमोन ट्रैप का यदि आप उपयोग करते हैं तो जो कीट पतंगे हैं उनकी प्रजनन क्षमता को हम ब्रेक कर देते हैं। हमें ट्राइकोडर्मा हो गया, नीम की खली हो गई, ऐसे कुछ जैविक उपचार पर जाना चाहिए
1: जी।
2: जो नींबू वर्गीय पौधे हैं या अन्य पौधे उनमें कवक जनित रोग बहुत ज्यादा आता है, इन सब की समस्या से बचने के लिए हमें बोर्डो पेस्ट का उपयोग करना चाहिए
1: जी।
2: इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट 1 किलोग्राम, बुझा हुआ चूना 1 किलोग्राम और पानी 10 लीटर लेना चाहिए
1: जी।
2: जो कॉपर सल्फेट है उसे हमें प्लास्टिक के बर्तन या मिट्टी के घड़े में घोलना चाहिए, किसी धातु के बर्तन में नहीं घोलना चाहिए। चूना अलग बर्तन में आपने घोल लिया और अगले दिन सुबह दोनों घोल को हमें मिला देना है। और अब जो ये घोल तैयार हुआ ये बोर्डो पेस्ट हो गया।
1: अच्छा।
2: इस बोर्डो पेस्ट को हमेशा फलदार वृक्षों में काट छाट करने के बाद आप उसमें बोर्डो पेस्ट लगा दीजिए। गमोसिस की समस्या हो गई या अन्य कवक जनित जो भी रोग व्याधियां हैं वो इसके द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं।
1: तो ऋचा जी, आपने आज बहुत अच्छे से और व्यापक तरीके से समझा दिया है हमारे किसान बहन भाइयों को कि अपने फलदार वृक्षों की देखभाल और साथ साथ उससे अच्छा उत्पादन कैसे लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: हाँ तो भैया हरो, अपन ने जा इतनी अच्छी सी जानकारी सुनी फलदार वृक्षों का प्रबंधन, और जो जानकारी दे रही थी डॉक्टर ऋचा सिंह और उनसे बातचीत कर रहे थे विपिन भैया, तो आप लोगों को इको लाभ जरूर मिलू हुई है।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: हाँ तो भैया आरो, अब देखो हम अपनी कमला जोन काकी हैं, वे तो अपनो काम कर रही हैं और कहन लगती हैं बिना शादी ब्याह है तो देखो अबे चला ही रहे हों। शादी ब्याह में हमारे मतलब मौड़ियन की शादी हो रही है, बहुएं आ रही हैं, कहूँ बहुएं आ रही हैं और कहूँ मौड़ी जा रही हैं, तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं और कई कई बहुएं आती हैं बोलन लगती हैं कि अगर ये हम आओ तो कौन हुई है, तो हम है ना ई के संगे ना जे हैं, बोले हम जेठ के संगे ना जे हैं, तो ससुर के संगे ना जे हैं, ऐसी कई तरह की बातें करती हैं। तो ऐसे ही अपनी जो उनकी बातें रहती हैं मन में, तो ऐसे ही उनकी मन की बातन को पिरो है अपने चंद्रकांता पाठक के गाना में। तो अपन जो सुना थे एक तो सुंदर सो लोकगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ तो भैया आरो, जैसे कि हम बात कर रहे थे अपनी कमला काकी की कि ये तो भैया बहुत काम कर रही हैं आजकल, है ना, खाद्य प्रसंस्करण से बढ़िया पेस्ट बना रही हैं अदरक लहसुन हरी मिर्ची को। तो हमने उनसे पूछी कि जा बताओ कक्की, इतो रुपया पैसा कमा के करहो का। सो बोलने लगी, अरे बिन्ना, खर्चा करवे की तो दस्ठैया साधन है, चाहे जो कछु खर्चा कर लो। सो हमने फिर भी कछु मन में सोचो तो हुई है। सो बोले कि जब मोड़ी देख रही हूँ, हमारे मोड़ा की है। सो हमने कि हाओ, हम तो देख रहे हैं। बोले 1 साल की हो गई। सो हमने कही ठीक है, बात तो अच्छी है, अच्छी हो गई, बढ़िया है, तो इनके बारे में क्या सोच रही हूँ। बोले सुकन्या समृद्धि योजना लेवे की सोच रहे हैं मोड़ी के लाने। सो हमने कि अरे काकी बहुत बढ़िया, जो तो बढ़िया काम कर रही हूँ। बोली और का, पोस्ट ऑफिस में जा हैं और को खाता खुलवा ले हैं। हमने कि फिर बोली का 15 साल तक हम पैसा जमा करें। हमने कहा कितो जमा करवे वाली हूँ। बोले कछु नहीं, 10,000 रुपया साल जमा करते हैं। अब ए अपन है ना, कौन से ज़्यादा पढ़ने हैं, 833 रुपया तो पढ़ने ही है हर महीना के हिसाब से, सो डाल दें। सो हमने कहा अच्छा। बोली और का, हमने कही और इसे का का लाभ है, जा तो बता दो हमें। सो बोलने लगी 10,000 रुपया डाल हैं तो ज़्यादा दिन नहीं डालने हैं, 10,000 रुपया अपन ने साल के डाले तो 15 साल में 15 साल तक ही डालने हैं अपन को। सो और बोली कि हमने कि फिर का हुई है। बोले कछु नहीं, अब अपन गए, अपन ने कितो डालो 1,50,000 रुपया पढ़े और फिर उसके बाद अपन को कछु नहीं डालने आए। हमने कि फिर बोली जब मौड़ी 21 साल की हो जाए तो 4,48,000 रुपया मिले उखो, तो उसके शादी ब्याह के काम यहाँ है। हमने कहा कि जा तो बड़ी उमदा बात करी और ई में ब्याज भी अच्छो है 8.2% और साथ साथ में जब टैक्स फ्री है ई में, कोनो टैक्स नहीं लगे आपको, जितनों पैसा आपको जमा है वो में ब्याज लग के आपको पैसा मिल जाए। और हमने कहा कि एक तो ठीक ठीक है, दूसरी मौड़ी होए तो उगे लाने भी जाइ योजना ले लियो। और बोली काय बिन्ना, अगर मान लो ई बार तो एक भाई मान लो उस समय है ना जुड़वा हो गई और दो ही बिटियाँ भाई, तो काय जाए योजना मिल जाए। सो हमने कि बिल्कुल मिल जाए, कैसे में बताने पड़े, उसको प्रमाण पत्र देने पड़े कि जुड़वा भाई है, इसे अपन तीन की ले सकते हैं।

या पॉलिसी, और अगर मान लो एक ही मोड़ी भाई तो दो मोड़ियन की पॉलिसी ले सकते हैं। सो बोली जा योजना तो बहुत अच्छी है। हमने की और का जा बहुत अच्छी योजना है, और जो हमारे भैया अब नहा रहे हैं जा योजना ले वो चाहते हैं, अगर उनकी बिटिया 10 साल से कम है तो अपन 10 साल तक जा योजना को लाभ ले सकते हैं, और उसके बाद अपन को पैसे जमा करने पड़े, सालाना अपन पैसे जमा करो, उनमें 8.2% ब्याज लगे मिले आपको, और बढ़िया आपको जब मोड़ी 21 साल की हो तो आप पूरा पैसा निकाल सका था। और मान लो कल के दिन आपको मोड़ी 10वीं पास हो गई है, बड़ी हो गई है, और उच्च शिक्षा के लाने आपको पैसा की आवश्यकता पड़ा थे तो आप वो पैसा ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? उनमें आप 50% पैसा ले सकते हो। तो भैया ये योजना को आप जरूर लाभ लें, और अपनी मोड़ियन के नाम पर जो खाता खोलें और इको लाभ लें। तो भैया आरो जे तो हो गई अपने बातें, और कहने लगत हैं कि देखो अपनों उम्र हो रही है तो उम्र के हिसाब से अपन सोचने लगत कि पता नहीं उम्र हो रही है तो आंखें कमज़ोर हो रही, बाल पकन लगे हैं, ऐसी बातें अपन सोचने लगत हैं। और सोचता पर ऐसी कछु अचू बढ़िया अपन को लोकगीत सुन में मिल जाए तो कानी कहने, तो मनीषा जैन को गाओ भाव जो इंदा अपन लोकगीत सुने और आनंद लें।

अभी आप कृषि जगत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। सुर्खियों में यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: Surgiome.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल इंडोनेशिया पहुंचे और जकार्ता में उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए कई फैसले भी लिए। इस विषय में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। अम्बेसडर तायल, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अम्बेसडर तायल, हमने इंडियन ओशन रीजन की तरफ भारत सरकार का एक झुकाव देखा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये विजिट है, ये इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न मैरिटाइम जोन और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, आप भारत इंडोनेशिया की साझेदारी को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं?
3: देखिए, अब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर किसी तरह से जुड़ चुके हैं और पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का कूटनीति का एक बहुत ही बड़ा पुश हमें देखने को मिल रहा है। पिछले अप्रैल में हम कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति भारत आए थे। अभी एक हफ्ता पहले हमने देखा कि जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी और बहुत ही एक सक्सेसफुल वो विजिट रही। और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और हिंद प्रशांत क्षेत्र की ये 5 देश मुख्य लोकतांत्रिक देश हैं और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा पहला पड़ाव भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा का इंडोनेशिया में आज रहा।
2: अम्बेसडर तायल, जैसे कि आपने बताया, जितने अग्रीमेंट साइन हुए, जितने नतीजे आए हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए भी सहयोग समझौते शामिल हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं की बेहतर समझ के लिए समझा सकते हैं इसको और विस्तार में?
3: देखिए, करीब 12 से अधिक समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में, संस्कृति, कल्चर और शिक्षा। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा। और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया। और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के। उसके अलावा जो सबांग पोर्ट है, एक जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है। क्योंकि ये श्रोताओं को समझना चाहिए कि जो मलक्का स्ट्रेट्स है, बहुत ही मुख्य पानी का रास्ता है जिससे पूरे ईस्ट एशिया व्यापार वहां से होता है, भारत का 40% व्यापार वहां से होता है। और अभी पीछे जो हमने देखा कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई वहां पे गतिरोध कभी भी आएगा व्यापार में और शिप्स को पार करने में, तो इस तरह मलक्का स्ट्रेट्स है, उसका ठीक वहां चले और उसमें कोई गतिरोध अवरोध ना आए, इसमें भारत और इंडोनेशिया का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं समझता हूं कि इस पर भी कुछ एग्रीमेंट और कुछ बातचीत हमारे प्रधानमंत्री और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के बीच में हुई है।
2: एक और जो अहम फैसला आज लिया गया, जिस पर मेरे समझ से चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि महत्वपूर्ण खनिजों और स्टील के क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करने का भी समझौता हुआ है। साथ ही स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट में साझेदारी का एक नया दौर, वो भी सामने आएगा। अम्बेसडर तायल, खास तौर पर आपसे महत्वपूर्ण उपयोगी खनिजों और रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में बात करना चाहूंगे।
3: पिछले 1-2 वर्ष में विश्व के सामने एक ये नया मुद्दा उठा है कि क्रिटिकल मिनरल्स और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स, इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीन ने अपना एक वर्चस्व जमाया है, 80% से ज्यादा ये कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे श्रोता ये देखेंगे कि भारत के जो भी एग्रीमेंट्स आजकल दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं उसमें हमेशा क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र रहता है, क्योंकि ये जो खनिज है ये बहुत रेयर है। ये नाम क्रिटिकल मिनरल्स और ये रेयर अर्थ इनको कहा जाता है। ये खनिज इंडोनेशिया में काफी मिलते हैं और एक देश इसको नहीं पूरी तरह से संभाल पाता, तो कई जगह ये देखा गया है कि कई देश मिलकर खनिज एक जगह होता है, उसको प्रोसेस दूसरा देश करता है और पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो भी समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच में आज हुआ है उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भविष्य में सप्लाई चेन पर पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स का। 21% दुनिया की निकल

0: बीच में हुआ है।
1: अम्बेसिडर ताहिल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के यूपीआई की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दुनिया भर में यूपीआई काफी विश्वसनीय और काफी उपयोगी साबित हो रहा है। आज ये घोषणा की गई है कि यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाएगा। जब यूपीआई सरहदें पार कर रहा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव लाने और लीडर के तौर पर ये सब भारत की छवि को और कैसे बेहतर बना रहे हैं?
0: जिस तरह से भारत में डिजिटल सर्विसेज पूरे 140 करोड़ लोगों तक पहुंची हैं, गांव-गांव में पहुंची हैं, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो, हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, और जो पेमेंट्स कार्ड्स के थ्रू बैंक के द्वारा हो रहे हैं, फोन के द्वारा हो रहे हैं, तो इसमें जो यूपीआई 10 देशों से पहले ही भारत का समझौता हो चुका है, जहां भारत आप यूपीआई से पेमेंट रुपीस में कर सकते हैं। अब इंडोनेशिया का जो इंडोनेशियन पेमेंट सिस्टम है उसके साथ भी यूपीआई का इंटीग्रेशन होगा, उसका मेल होगा। हमारे जो पर्यटक हैं और बिजनेस के लोग हैं, वो अगर इंडोनेशिया जाएंगे तो रुपीस में यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इससे देखिए, दोनों देशों के नागरिकों को ये लाभ भी होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कमीशन होता है वो भी बच जाता है, क्योंकि पहले अगर आप इंडोनेशिया जाएं कुछ खरीदें तो पहले वो रुपया वहाँ डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर भारत के रुपए में कन्वर्ट होगा, और दोनों तरफ वो कमीशन डॉलर वाला लेता है। तो अगर डायरेक्ट रुपी और रुपया डायरेक्टली लिंक होगा तो वो कमीशन बच जाता है, दोनों देशों के नागरिकों को उससे फायदा होगा।
1: अम्बेसडर तायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए भी आज समझौते हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आजकल पूरी दुनिया में एआई का डंका है, तो एआई के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया आगे अपनी साझेदारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि एआई सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके?
0: आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये शताब्दी है, 21वीं शताब्दी, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है, और उसका एक रूप जो सामने आया है पिछले 1-2 साल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल नया टूल विश्व में समाज के साथ आपके पास आई है, जिस पर मास्टरी करना बहुत आवश्यक है हर देश को जो भी आगे बढ़ना चाहता है। और इसमें भारत पहले ही बहुत काम भारत में हो रहा है, मिशन्स हैं और स्टार्टअप्स में तो भारत ने कई पिछले सालों से गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से बहुत मदद की जाती है स्टार्टअप्स में, हमारे युवाओं को और हमारे इंजीनियर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। इंडोनेशिया भी एक युवा देश है, वहाँ भी 28 करोड़ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बढ़ रही है और युवा लोग अधिक हैं। वहाँ आगे के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होगा, और इसमें भारत इंडोनेशिया साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया। तो आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मुख्य अंश।
2: पिछले 2 दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ भी पिछले 1 दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है।
1: अम्बेसडर तायल, इंडोनेशिया द्वारा इन दोनों जेस्चर्स को भारत की तरफ कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए है, तो इन दोनों कदमों को आपकी नजरिए में आप कैसे देखते हैं?
0: ये एक बहुत ही प्रमुख सम्मान है प्रधानमंत्री का भी और भारत का भी। प्रधानमंत्री अब 12 वर्ष से दुनिया के पटल पर हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। उनको एक बहुत ही बैलेंस्ड नेता के रूप में दुनिया देखती है, जो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। आज भी जैसे उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, और दुनिया देख रही

0: ये है कि अब चाहे वो अमेरिका और ईरान हो, वो अब जाके डायलॉग और डिप्लोमेसी पे ही इतना मारामारी के बाद वहां आ गए, तो उसका भी सम्मान है बिंटांग आदिपूर्ण के द्वारा। और भारत का भी सम्मान है कि वो भारत की जो नीतियां रही हैं, भारत और इंडोनेशिया का पुराना सिविलाइजेशनल एक जोड़ है, एक कनेक्शन है, और दोनों देशों का ध्येय भी एक ही है कि पूरा इंडो पैसिफिक, प्रशांत हिंद महासागर पीसफुल रहे और दोनों देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और जैसे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियन पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। हर जो भी नेता दूसरे देश के जाते हैं, उनको हर एक को ये ऑनर प्राप्त नहीं होता कि वो वहाँ के पार्लियामेंट को भी एड्रेस करें, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उस देश के नेताओं से जो भारत और इंडोनेशिया की मैत्री का संदेश, जहां जहां से भी वो आए हैं, जो पूरा इंडोनेशिया, वो संदेश वहां लेके जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। और प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में एक बहुत ही बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि भारत विकास का रास्ता फॉलो करता है, एक्सपेंशनिज्म का नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने भारत के बारे में कही।
1: आखिर में अम्बेसडर तायर, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। क्या आप उन कदमों के बारे में बता सकते हैं जो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान इन संबंधों को और प्रगाढ़ और बेहतर करने के लिए उठाए गए हैं?
0: भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशियन आर्किपेलागो के तो सांस्कृतिक संबंध हजारों साल से हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुबियांतो जाएंगे, एक परम्परण मंदिर है, 1000 साल से ज्यादा पुराना है, योग यकार्ता में, उसके जीर्णोद्धार के लिए भारत ने का जिम्मा उठाया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के लोग और समाज और गवर्नमेंट हमेशा इस कनेक्शन को जो भारत के साथ है, संस्कृति का, सिविलाइजेशन का, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। रामायण अभी भी बहुत ही एक पॉपुलर डांस ड्रामा के रूप में पूरे इंडोनेशिया में देखा जाता है। और अगर आप जकार्ता जाएं तो एक जगह वो श्री कृष्ण जी जो रथ और अर्जुन का रथ भी एक बहुत ही अच्छे जगह बहुत बड़ा बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति एक बहुत जगह बहुत बड़ी बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा पुराना नाता है और उसको प्रधानमंत्री की यात्रा में और सुदृढ़ किया जाएगा और उसको और ज्यादा लोगों के पास ले जाने का प्रयत्न है। और दूसरा, 1927 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर इंडोनेशिया गए थे, उसकी शताब्दी 2027 में बहुत धूमधाम से इंडोनेशिया और भारत दोनों जगह बनाई जाएगी। उसमें गुरुदेव टैगोर और इंडोनेशिया के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका भी बहुत अच्छा योगदान था। उन दोनों के नाम से ये शताब्दी दोनों देशों में मनाई जाएगी।
1: अम्बेसडर तायल, आपने प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण दिया है हमें, और आपने हमारे साथ अपने विचार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साझा किए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में।
5: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा फिल्म चलते चलते से। इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह ने। गीत पप्पू ढिल्लन और बाबू मान का, संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

फिल्म संगीत का अगला गीत फिल्म हम तुमसे। इस गीत को गाया है शान और अलका याग्निक ने। गीत प्रसून जोशी का, संगीत जतिन ललित का।

0: मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
1: टरकर
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है
1: तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा,
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: इंटीरियर
0: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके दैट्स इट।

बेनी दयाल के स्वर में टू स्टेट्स का गाना आपने अभी सुना, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और अब सुनिए फिल्म खाकी का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में। समीर के शब्दों को संगीत का लिबास पहनाया राम संपत ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9 हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है।

0: प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु आईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत

0: जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the 3rd T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight.

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता सावनी राजू।

0: नमस्कार श्रोताओं, यह है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू। हमारे इस कार्यक्रम के लिए फोन नंबर है 2666-445-240-2093, जबलपुर का एसटीडी कोड 0761। यूं तो हमारे सभी श्रोताओं को पता है कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कब होती है और इसका प्रसारण कब किया जाता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में गाहे बगाहे हम आपको बताते चलते हैं। तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है मंगलवार को 11:15 से 11:50 तक, और इस कार्यक्रम का एक भाग यानी इस रिकॉर्डिंग का एक भाग मंगलवार को ही रात 9:30 से लेकर 10:00 तक आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से प्रसारित किया जाता है, और शेष भाग आप सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने के नाम से विविध भारती जबलपुर से दिन में 11:00 से लेकर 11:55 तक। तो फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, सुनते हैं हमारे ये कॉलर कौन है। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: हेलो
0: जी, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ बहन जी।
0: जी, आपका नाम बाहुबली है।
1: जी जी, ये तो हमारे माता पिता की देन है, हमारा तो कुछ उसमें सहभाग नहीं है।
0: हाँ जी, पर सारी उम्र आप इसी नाम से जाने गए हैं।
1: जी जी जी।
0: और माता पिता ने जब नाम रखा तो कुछ सोचकर ही अच्छा सोचकर रखा होगा।
1: जी जी जी, ये बाहुबली बोले तो जैन धर्म के अनुसार
0: बिल्कुल जी
1: 24 तीर्थंकर हुए हैं
0: जी,
1: उसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और 24वें महावीर
0: जी।
1: ऋषभनाथ को दो बेटे थे, एक भरत और बाहुबली। भरत ने तो साम्राज्य संभाला, बाहुबली अपने आत्मकल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर तपस्या के लिए वन में चले गए
0: जी। अब इतना तो, अच्छा देखिए, इतना अच्छा सोच कर आपके नाम के पीछे इतना अर्थ छुपा है, इतनी हमारी जी, संस्कृति छुपी है ना।
1: जी जी जी।
0: आप बाहुबली जी क्या करते हैं?
1: मैं तो अभी रिटायर हूँ, घर में आराम करता हूँ।
0: वाह,
1: पहले तो मेरी जब मैं धन बोले तो व्यवसाय में था तो मेरी बुक स्टॉल और स्टेशनरी की दुकान थी।
0: ओ, अच्छा।
1: उसमें तो, मैं आनंद में और सुख में और समृद्धि के साथ जीवन यापन किया है। कहना तो नहीं चाहता हूँ, मगर मैं बीकॉम LLB एडवोकेट हूँ।
0: जी, अच्छी बात है।
1: और कोर्ट में जब मैं गया तो वहाँ का माहौल देख के मेरी अंतर आत्मा ने आवाज दी कि तू गलत
0: जगह आ गया,
1: क्षेत्र में आ गया है
0: जी।
1: तो मैंने वो मार्ग छोड़कर अपना स्टेशनरी और बुक स्टॉल चालू करा, और उसमें समाधान आनंद और समृद्धि के साथ मेरा जीवन यापन हुआ है बहन जी।
0: बहुत अच्छी बात है बाहुबली जी। देखिए, किताबों के पुस्तकों के साथ जो रहता है ना, उसकी तो अपनी एक बहुत ही निराली नायाब दुनिया होती है, क्योंकि किताबें हमारी वो सच्चा साथी हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जिनसे हम मिल नहीं पाते उनसे हम किताबों के जरिए मिल जाते हैं।
1: जी जी जी। और किताबों में ऐसा है, दुनिया की पूरी जानकारी है और तुम्हारा मनोरंजन तो होता ही है, मगर ज्ञान में वृद्धि भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: प्रेमचंद और तुम्हारे माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं,
0: क्या बात
1: है, ऐसे अनेक ग्रंथ मैंने पढ़ा है।
0: बहुत अच्छा।
1: और मेरी मातृभाषा मराठी है
0: जी, तो बोलने से समझ आ रहा है। हाँ,
1: ख्यातनाम लेखक है जैसा आचार्य अत्रे और बहुत से जो लेखक है उनके और आत्मचरित्र ये मैं सब पढ़ चुका हूँ बहन जी।
0: बहुत अच्छी बात है बाहुबली जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बताएं कि आज हम आपको गीत कौन सा सुनवाएं?
1: तो फिल्म नया दौर का एक गीत है और अनायसे आज 7 जुलाई दिलीप कुमार की बोले तो एक स्मृति दिन भी है
0: जी,
1: उसको ध्यान में रखते हुए उनके ही आवाज में एक गीत है, आना है तो आ, राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है।

0: हेलो।
1: हेलो, फोन इन कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन रिसीव किया। मैं बहुत देर से परेशान था।
1: परेशानी खत्म हो गई?
0: जी,
1: तो अब नाम बताइए।
0: मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
1: फूलचंद जी मनकारी से बोल रहे हैं, आपसे पहले भी बात हो चुकी है।
0: जी, बिल्कुल, मुझे भी लग रहा था कि आपसे बात मेरी हो चुकी।
1: तो फिर करनी है कि नहीं?
0: बिल्कुल करनी है
1: कि
0: अरे
1: एक बार हो
0: अरे
1: चुकी तो चलो अब जाने दो। हाँ
0: नहीं, हमेशा होती रहे हमारी आपकी
1: जी
0: बात।
1: जी बताएं कुछ अपने बारे में फूलचंद जी, और कुछ अपने मनकारी के बारे में।
0: बिल्कुल बिल्कुल बताएं। और मुझे आप, इतनी प्यारी आवाज आपकी, और आपका नाम भूल जाता हूं मैं थोड़ा, आप अपना नाम बताइए।

0: साबनी राजू,
1: राजू।
0: साबनी नाम है, उपनाम राजू है। सावन का महीना सुना है आपने, अब बस आने
1: हाँ
0: वाला है,
1: हाँ
0: तो बस सावन के नाम में बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, सावनी।
1: सावनी,
0: हाँ समझ गए ना,
1: समझ गए सावनी, बहुत प्यारा नाम सावनी। हाँ,
0: फूलचंद जी
1: जी जी जी
0: आपका
1: जी
0: नाम भी बहुत प्यारा है, हम एक बार में समझ गए।
1: अरे क्या बात है, क्या बात
0: जी
1: है।
0: आप बताएं कि आपका मनकारी का भी मौसम कैसा है और क्या क्या है मनकारी गांव में।
1: मनकारी गांव में देखिए, मैं आपको बता दूं कि मनकारी का मौसम क्या, हमारा पूरा मध्य प्रदेश का मौसम बहुत ही अभी लाजवाब है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: हाँ
1: और हमारे यहाँ तो इतने प्यारे प्यारे काले काले बादल छाए हुए हैं और बरसात भी हो रही है। क्या
0: प्यारे प्यारे काले बादल वहीं आए हैं बस मनकारी में।
1: जबलपुर में नहीं है क्या?
0: नहीं आपने कहा ना हमारे यहाँ प्यारे प्यारे काले बादल
1: जी जी जी
0: है ना,
1: जी
0: तो काले मेघ तो प्यारे ही लगते हैं बशर्ते वो बारिश में ही आए।
1: हाँ, बारिश हो रही है हमारे यहाँ, बहुत तेज बारिश हो
0: हाँ
1: रही है। जी
0: हमारे यहाँ भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है लेकिन बहुत भी हो रही है।
1: जी जी
0: अब
1: जी जी
0: बताएं फूलचंद जी कि हमारे यहाँ के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप और पसंद करते हैं।
1: देखिए, जबलपुर के मैं सारे कार्यक्रम सुनता हूँ और मुझे सारे कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं।
0: कोई एक सबसे अच्छा लगता होगा।
1: मुझे सबसे अच्छा फोनन कार्यक्रम लगता है,
0: और सबसे
1: सबसे ज्यादा
0: खराब,
1: मैं फोन कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ।
0: और सबसे खराब कौन सा लगता है या
1: अरे
0: सबसे
1: खराब
0: कम
1: तो कोई
0: अच्छा।
1: नहीं है, खराब
0: सबसे
1: तो
0: कम
1: सबसे सब
0: अच्छा,
1: सबसे
0: सबसे कम अच्छा कौन सा लगता है।
1: अच्छा, मैंने बताया कि सबसे
0: हाँ
1: बढ़िया
0: फोन
1: कार्यक्रम
0: इन,
1: मुझे फोन कार्यक्रम लगता है, और जितने कार्यक्रम लगते हैं वो सभी मेरे मुझे अच्छी लगती है।
0: चलिए आज कौन सा
1: मैं
0: गाना सुनेंगे।
1: देखिए राजू जी, क्या है कि देखिए बरसात का मौसम है और अभी इस समय पे जो है सारे श्रोताओं से निवेदन है कि बहुत संभल के रहे, और सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है।
0: और पिकनिक स्पॉट पर भी संभल कर जाएं क्योंकि कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है
1: घट
0: ना,
1: सकती है, और देखिए कहीं भी आप जाए और साथ
0: असावधानी के
1: अगर
0: कारण दुर्घटना घट सकती है।
1: घट सकती है, और कहीं भी आप जाए साथ अगर कहीं घूमने के लिए जाए और नदी साथ अगर बह रही है साथ अगर, तो उसका पार रफ्ता पार ना करें आप।
0: बिल्कुल सही,
1: तो बाकी जो है सावधानी साथ अगर रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगी।
0: बिल्कुल सही, जीवन में हर पल सावधान रहना तो जरूरी है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: गाना कौन सा सुनवाएं।
1: बिल्कुल। और मुझे इस समय पे जो है बहुत सर्दी जुखाम वाला सिस्टम चल रहा है, तो मुझे एक बहुत ही एक गीत याद आ रहा है, फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन, और गीत के बोले कि सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं तो गया यारू मुझको लव लव लवेरिया
0: लवेरिया
1: हुआ।
0: हुआ। जी,
1: जी
0: शाहरुख खान, जूही चावला, नाना पाटकर है
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: अजीज मिर्जा ने ये फिल्म बनाई थी जिन्होंने सर्कस सीरियल बनाया था।
1: जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, और मैंने बहुत देखी थी ये पिक्चर अपने जमाने में,
0: बहुत देखी थी, मतलब बहुत बार देखी थी है ना।
1: बहुत बार देखी थी, बहुत बार
0: हाँ
1: देखी थी टाकीज में,
0: जी
1: छतरपुर
0: अच्छी
1: में
0: फिल्म
1: मैंने
0: थी,
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: बार देखी थी। सही बात कहा
0: सर्कस
1: है
0: की
1: आपने, और
0: पूरी
1: आपने
0: टीम
1: पूछा
0: इसमें
1: कि
0: थी।
1: आपने पूछा था कि मनकारी के आप हालचाल बताइए, तो मनकारी के आसपास में एक हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जलियांवाला, बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग।
0: ओह अच्छा।
1: तो जैसा अपना अमृतसर में है ना, ऐसी एक अपना बुंदेलखंड में एक जलियांवाला बाग है हमारे छतरपुर जिले में, जिसे चरणपाद का नाम से कहते हैं।
0: अच्छा
1: वहां पर जो है, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो वहां पर हम जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदू हैं, वहां पर सम्मेलन कर रहे थे कि देश कैसे आजाद हो। तो अंग्रेजों को पता चल गया था, तो उन्होंने जो है निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी थी,
0: ओहो
1: तो वहां पर जो है सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हुए थे। आज भी वो स्मारक बना हुआ है, जब भी आप खजुराहो घूमने आए या हमारे छतरपुर जिले घूमने आए तो वहां पर जरूर देखें, आप जाके स्मारक देखें तो आपको देखते ही आपकी आंखें नम हो जाएगी। खजुराहो
0: खजुराहो से कितनी दूर है।
1: से मात्र जो है 25 किलोमीटर की दूरी पर है, चरण,
0: चरणपाद नाम है उसका।
1: हाँ चरण उपाधि का नाम है, और उर्मिल नदी है जो अपना, उर्मिल नदी का वो बिल्कुल नदी के किनारे पर है,
0: अच्छा
1: और जिस समय जो नरसंहार हुआ था उस समय जो है पूरी उर्मिल नदी का पानी लाल हो गया था खून में।
0: ओहो चलिए जरूर आएंगे कभी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। फूलचंद जी आपके पसंद का गीत भेज रहे हैं, सुनिए।

0: फोन करें गीत
1: हेलो,
0: सुने आकाशवाणी जबलपुर।
1: सावली राजू जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं।
1: राजकुमार कुरिल,
0: राजकुमार जी कहाँ रहते हैं, जबलपुर में ही?
1: जबलपुर में ही अपने कडंगा एमएस कॉलोनी के सामने। सब
0: जी, कैसे हैं आप राजकुमार जी?
1: बढ़िया, सब आप लोगों का आशीर्वाद है।
0: स्वास्थ्य अच्छा है?
1: जी बिल्कुल अच्छे हैं।
0: बारिश का आनंद ले रहे हैं?
1: जी हाँ, सुबह वॉक करने जाते हैं, आज सुबह भी गए, अच्छी बारिश हो रही थी हल्की हल्की।
0: फिर बारिश में भुट्टे खाते हैं कि नहीं?
1: जी खाते हैं ना।
0: जी,
1: हाँ
0: और घर से ज्यादा आनंद आता है जब वो ठेले किनारे ठेले से भुना हुआ लेकर खाओ।
1: हाँ
0: और इस वक्त राजकुमार कुरील जी का फोन कट गया। पसंद का गीत भेज रहे हैं, सुनिए।

0: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: इंद्रभान सिंह जी नमस्कार, आप और आपके चिरमिरी दोनों कैसे हैं?
0: ठीक है मैडम, ठीक है। ये मौसम यही बादल किया हुआ है और इसके बाद ये मतलब कि उत्तर दिशा तरफ और क्या बोलते हैं पूरा दिशा तरफ बादल किया है, काला किया है, कम किया है
1: जी
0: और बाकी तरफ भी किया है बादल, लेकिन जैसे लाइटिंग बादल है। मौसम
1: बिल्कुल।
0: बढ़िया है, नर्सरी के बीच में हूँ, बातचीत बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है मैडम।
1: और
0: अब
1: ये वो
0: बरसात
1: मौसम है जब आप नर्सरी में हैं, तो हम अपने सारे श्रोताओं को कहें कि इस वक्त पौधरोपण किया जाए तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी, पौधरोपण करने से क्या है मैडम कि पौधरोपण करने से पौधे जल्दी उगते हैं और
1: हाँ
0: जमीन ठंडा रहता है, पानी खूब मिलता है और अधिक से
1: बिल्कुल,
0: अधिक पेड़ लगाना पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए वर्षा
1: बहुत
0: को
1: जरूरी है। और
0: काफी
1: ये वो
0: जरूरी।
1: मौसम है जब हम पौधारोपण कर सकते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल ही रहा है, तो हम अपने सारे श्रोताओं से कहेंगे कि 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव भी मनाया जाता है, तो वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, हरियाली बढ़ाएं और अपना स्वयं का जीवन का संतुलन बढ़ाएं। जीवन की प्रगति तरक्की में सहायक हैं हमारे ये जंगल, है ना?
0: जी मैडम, और जैसे आम की गुठली, जामुन की गुठली जो रहता है मैडम, तो उसको भी लगाए तो क्योंकि वो भी बढ़ेगा। उसको पहले
1: बिल्कुल
0: लगाने से पहले सबसे पहले सुरक्षित करना बहुत जरूरी है,
1: हाँ,
0: जानवरों के और लोगों
1: छोटे
0: को भी
1: पौधों
0: ना
1: को
0: हो।
1: सुरक्षित करना जरूरी है, तो टी गार्ड लगा सकते हैं।
0: जी, टी गार्ड लगा सकते हैं, कुछ लोग ईटा से घेराव करते हैं गोला बना के,
1: हाँ
0: इसके बाद वो करते हैं। जैसे मेन रोड में देखिएगा, पहले होता था तो पेड़ पौधे लगाते थे तो काफी हरियाली दिखता था पेड़ में, एकदम रोड में
1: बिल्कुल
0: तो छाया भी मिलता था, उसमें बस में जाते थे तो खिड़की तरफ से भी छाया मिलता था, धूप भी नहीं लगता था, हवा भी ठंडा ठंडा चलता था,
1: जी
0: और आम भी मिलता था, आम जामुन सब।
1: जी इंद्रभान जी, आज कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: आज मेरे को सुना दीजिएगा मैडम, फिल्म का नाम है मेरा साया और गीत की बोल है नैनो में बदरा छाए, गायिका लता मंगेशकर।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम फोन करे गीत सुने, जिसे आपने सुना आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ। तकनीकी सहयोगी थे नित्यानंद त्रिपाठी और रईस पटेल। इस कार्यक्रम के संयोजक श्याम लाल टहलानी। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रस्तुति सावनी राजू की। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए पूर्व प्रसारित अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा की रिकॉर्डिंग में पंडित कैलाश शर्मा का बांसुरी वादन, तबले पर संगत पंडित विनोद लेले की।
1: शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Shri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as

0: विष्णु दिगंबर जयंती, शंकर लाल म्यूजिक फेस्टिवल, सहर, द नैना देवी मेमोरियल फेस्टिवल, टू नेम अ फ्यू।
1: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
0: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद्र शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मालगुंजी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद्र शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ

0: Akashwani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashwani.
1: अभी आप पूर्व प्रसारित अखिल भारतीय रवि बांसुरी संगीत सभा की रिकॉर्डिंग में सुन रहे थे बांसुरी वादन पंडित कैलाश चंद शर्मा से, तबले पर संगत पंडित विनोद लेले की।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि

आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।